0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपन एक तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज हम कितना खुश रह पाते हैं, क्या हर पल खुश रह पाना संभव है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूं। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं तो वो क्रिएट कैसे करूंगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।

0: शिवानी, ये पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कह रही थी मिल रहा था वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ, खुशी का लेवल बढ़ा, खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आए। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहां कहां डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरे डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मीन्स माई थॉट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट।
0: तो अब इस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं?
1: एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन। यू नो, परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती
0: है। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था।
1: सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आई वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन ताकि वो जो रिश्ता है हमारा इट बिकम्स अगेन स्मूथ अगेन फ्लोइंग। लेकिन हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है कि मैं ठीक करूंगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर एक मिनट देखिए, व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग, अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड वन मिनट जस्ट चेक व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं,
0: आदत नहीं है,
1: हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहां चल रही है। अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलते ही जाते। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना
0: पॉसिबल
1: इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है? व्हाट इज क्रिएटिंग द थॉट? थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। हम क्या इन्फॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल आर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड हमें लगता है ओ दिस इज अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं, कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है। तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने
0: अच्छा,
1: अपने बच्चों
0: एक और बात है, सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज कंटिन्यूस रहती है आपके साथ।
1: सिर्फ न्यूज तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सोकर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है। यू नो, आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है। जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर बहुत हाई है। अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है। तो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि सुबह के दो घंटे करीब हमारी अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर

0: एक्टिवेट होने लगता तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया, आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए। अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपके सब कॉन्शियस माइंड पे जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए। अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सब कॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया। क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं। दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया। फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी। फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है। तो वो जो फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट सारा दिन आप क्रिएट करेंगे। भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह, इट इज नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज क्या हुआ, वो वर्ड आपकी सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया। अब वो ही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे। अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप शाम को घर पहुंचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुंचा टाइम पे, आप फोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फोन, नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर,
1: एक्सीडेंट।
0: सी आपने इतना इजीली बोल दिया, एक्सीडेंट हो गया, क्यों एक्सीडेंट हो गया, व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सबकॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर। तो जैसे ही वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी। तो एक है सुबह में कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले। ये दो टाइम बहुत क्रिटिकल है। अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज, शाम को है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज ईदर फियर और पैनिक, या यू नो संबंधों में मिस्ट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, सो गए, रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी। फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स
1: क्वालिटीज के साथ उठेंगे।
0: सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठते ही पहली चीज हम क्या अंदर डालते हैं, इट्स लाइक ब्रेकफास्ट, कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, आपका ब्लॉटिंग पेपर बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए। एनीवन कैन ट्राई दिस, सिर्फ एक महीने के लिए आप सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर मत देखो, टेलीविजन नहीं देखो, आप पढ़ो न्यूज़पेपर बट स्लाइटली लेटर ऑन, यू डोंट हैव टू डू इट वो सुबह यू नो 6 से 8 या 6 से 9 बजे के बीच, और उसकी जगह आप कुछ और पढ़ो। कई लोग कहते ठीक है हम पेपर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ और तो आप पढ़ेंगे जिससे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरता। इतना सा करने से यू विल सी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। भोजन ही अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स कहां से क्रिएट होगा, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हमने सुबह सुबह ये डाला अपने अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, अब रात को मेरे घर कोई लेट है, कोई नहीं पहुंच रहा, आई वुडंट थिंक ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज आई हैवंट फिटेड दैट इन्फॉर्मेशन इन द मॉर्निंग, आई विल से आ जाएंगे,
1: कम बैक, हाँ वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ।
0: कुछ नहीं हुआ,
1: बैटरी खत्म हो गई।

0: एक्चुअली सो मेनी
1: वो थॉट्स है ना, वो आपके थॉट्स है. अब इसी में अगर आप देखो, अगर मैंने ये सोचा बैठकर एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको खो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर दी. आधा घंटा एक घंटा इस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको. सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर, वो सारी बाहर निकल आएगी. सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है, तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा, एक झगड़ा होगा. दिस इज माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग. ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी. इफ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन, एब्सोल्युटली ओके, सो देयर विल बी नो फाइट. टू डिफरेंट डेस्टिनीज. तो वी आर क्रिएटिंग इट एट एवरी स्टेप. सो वन सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखे, जैसे एट द ब्रह्म कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरीवन कैन चूज कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय, आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्यूलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्यूलेट करके फिर हम सो जाते हैं. तो शरीर तो सो गया लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता. फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसी होती है? इट जस्ट डजंट फील के योर एनर्जी.
0: रात को जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं, तो लाइक काफी साइंटिस्ट से बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है.
1: हाँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाए. अभी यही, अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स चल रही है, तो आपको नींद नहीं आती ना. आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं सो पा रहा. सो कौन नहीं पाता जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता. वो दिन की चीजों को, सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है, वो उसके ऊपर होवर कर रहा, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती. तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दे और उनको नींद आ जाए. तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारे थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाए. यू नो, कोई बात मुझे परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव बहुत सारे हैं. आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें. आपके थॉट्स धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा. और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी you know, ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है. अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट. क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते. यू नो, कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट. जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग.
0: कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद.
1: रीड इट लाउडली.
0: हाँ,
1: रीड इट लाउडली, इट वर्क्स. सी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए. हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ. रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं. क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं, आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसमें चली जाती है. कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोचो. रीड इट लाउडली, इट हैज टू चेंज. होगा ही, नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर. जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे. इट हैज टू चेंज. एंड द अदर थिंग विच हैज अ डीप इम्पैक्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस. पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी
0: तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था,
1: तो वो मेरे, जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है. तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट. क्लीन इट आउट, उस सिचुएशन को समझू, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहां से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं, क्या करूं मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था, तो मुझे डर तो लगेगा ही.

0: आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूँ बाय क्रिएटिंग द थॉट आई एम अ पीसफुल बींग. नो वन एल्स हैज द पावर टू हर्ट मी. पीस इज माय नेचर. शांति मेरी शक्ति है. ये मेरी क्रिएशन है. ओम शांति.
1: ओम शांति. आई एम अ पीसफुल बींग. In fact, it's amazing, you know, how just one thought and sitting in silence can help you so much. Let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है. कितना आसान है. एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को. अब इतनी रामा कुमार जी का ये सफर आगे भी चलता रहेगा. थैंक यू सो मच.
2: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक. पुणे रिया आवाज 107.8.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद मिला।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: अहम ऐकल का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन खुश रहो खुशियां बांटो।

0: very warm welcome to Awakening with Brahma Kumari. मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको कुछ बता रही है कि जैसे कुछ मिल गया हो हमें. जी हाँ, हम एक सफर पर हैं, एक तलाश में थे खुद को पहचानने की, और अब ऐसा लगता है कि इस सफर में शायद कुछ कुछ जानने की कोशिश हो रही है. अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन हूं मैं, हु एम आई, आई द सोल. यहां तक तो हम पहुंचे, इसके आगे का सफर और जारी रखते हैं. और इस सफर में हमारी हम सफर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, फटाफट एक रिकैप करते हैं और मैं बताने की कोशिश करती हूं कि अभी तक मैंने क्या समझा जो ये सफर तय कर रहे हैं. हु एम आई, सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी कि क्या जरूरत है खुद को पहचानने की. तो इतने सारे रोल अदा करते करते, बहन का, माँ का, बेटी का, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं. आई द सोल और सुप्रीम, मैं वो सोल हूं, वो आत्मा हूं जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है. आपने इतना खूबसूरत हमें एहसास करा दिया है. उसके बाद था कि उस अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. एक थॉट जो था वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा था, एक इंटरनल प्रोसेस था जो कि बहुत लॉजिकल था, तो काफी क्लियर होती गई वो बातें. उसके बाद हम आए कि जो पूरा ये प्रोसेस है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं. तो सामने आई ईगो, और ईगो के लिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर याद हो, मुझे अभी तक याद है कि वो जो ईगो थी, वो मेरा अहम, जिसे मैं कहती हूं कि अपने आप को मैं सुप्रीम दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं, वो जनरेट हो रहा था अंदर कहीं फियर या भय से, क्योंकि अटैचमेंट थी. अब इसके आगे का सफर है, या इसको थोड़ा सा कुछ और आप कहना चाहेंगे?
1: नहीं, वो ईगो बनने का, ईगो जैसे थे, इट वॉज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज. अपने मन में कोई एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में लेकर उस चीज से इतना जुड़ जाना कि इन द प्रोसेस अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाना कि मैं एक्चुअल कौन हूं. और जहां अटैचमेंट थी वहां एक रिजेंटमेंट है कि कहीं ये छूट ना जाए, वो डर एक बना रहता था. और ये फिर हम अपने व्यवहार में हमने देखना शुरू किया कि कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर है जिसमें ईगो झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा ईगो सामने आ रहा है. एंड वी लुक्ड अप अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स उसमें, जैसे आर्ग्यूइंग, जिद करना, यू नो, बॉसिंग, दूसरों के ऊपर रोब जमाना,
0: एंगर.
1: एंगर
0: इज अ मेजर एस्पेक्ट. और ये एहसास कि मैं सुप्रीम हूँ,
1: right.
0: ये देना,
1: राइट.
0: ये एहसास तो अंदर से नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे डर है,
1: right.
0: कि कहीं मैं नहीं हूँ.
1: तो वो एहसास करने की कोशिश करते हैं.
0: एक क्रिटिसिज्म जो है वो भी एक हमने माना था, और कुछ इंटरनल चीजें थी, हर्ट होना, रोना,
1: क्राइंग, सल्किंग, दूर होकर विदड्रॉ करके बैठ जाना, यू नो, पेन जो अंदर चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट से, वो फियर से जुड़ा हुआ था.
0: जैसे शिवानी, इन पे एक एक करके मैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो ईमेल्स आए हैं उनमें एक ऐसा ही क्रिटिसिज्म पे एक मेल है हमारे पास, जो कोलकाता से आया है, मिसेस बैनर्जी का. एंड व्हाट शी सेज इज कि वो उनके 25 साल हो गए हैं शादी को. शादी के पहले दिन से ही उनकी मदर इन लॉ जो हैं उनसे नाराज रहती हैं, हर कदम पे, हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती हैं. और 25 साल, एक्चुअली 25 इयर्स लॉन्ग टाइम, तो उसके बावजूद भी वो क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुआ है. मैं समझने की कोशिश करती हूं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार मुझे बुरा लगता है और मुझसे मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगता है. तो मैं क्या रास्ता अपना सकती हूं? एक्चुअली 25 साल तो मतलब कंटिन्यूस,
1: लेकिन एक संस्कार बना हुआ ना, तो वो संस्कार कहीं चेंज नहीं हो रहा है उनका. तो जो सुन रहा है उसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा. इसमें हम दो स्टेप में ले सकते हैं कि जो क्रिटिस

0: रिकॉग्नाइज कर रहा है उसका ईगो क्या है, और जो हर्ट फील कर रहा है उसका ईगो का, क्योंकि ईगो तो दोनों का ही बहुत
1: यहाँ एक बात, क्योंकि जो हर्ट फील कर रही है, जो हमने हर्ट की बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होता है कि हम हैबिट पड़ जाते हैं कि अच्छा मैं हर्ट होंगी या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो मुझे हर्ट करेंगे,
0: राइट।
1: तो ये कैसे हम जो,
0: क्योंकि क्रिटिसाइज हम सब लोग बहुत करते हैं, हम सबको आदत है कि किसी न किसी को छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करें। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कहाँ हम चेक करें, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग ये एक बिहेवियर है, ये हमारा व्यवहार है दूसरों की निंदा करना। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं क्योंकि ये बाहर हो गया, अब हमें इसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आता है और तुरंत आपके आइडिया को सुनते मैं उसको क्रिटिसाइज कर देती हूँ या उसको रोकने की या सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अब मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है कि जब मैंने आपकी आइडिया को क्रिटिसाइज किया मेरा फियर क्या,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फियर है।
0: हाँ, क्या फियर होगा, क्योंकि कोई फियर है, मुझे उसको अपने आप के लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि जब मैं दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बिकॉज नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अपने बिहेवियर को देखना, उसके पीछे के भय को पहचानना, किस चीज से मेरा अटैचमेंट है वो पहचानना, लेट गो,
1: उस अटैचमेंट को छोड़ना।
0: क्योंकि जैसे ही वो अटैचमेंट को छोड़ेंगे वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और मेरा ईगो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ स्टेप ब्रेकिंग डाउन, इट्स अ प्रोसेस। देखो सेल्फ अवेयरनेस यही है, अभी मुझे अवेयरनेस है कि ये एक प्रोसेस है जो अंदर चलता है। नाउ एवरी टाइम आई सी दैट बिहेवियर आई शुड गो टक टक टक स्टेप, व्हाट हैपेंड, बिहेवियर, फियर, अटैचमेंट, लेट गो, यू नो,
1: वेरी गुड, एंड इट इज पॉसिबल,
0: इट्स पॉसिबल। सो लेट सी कि अगर आपने एक आइडिया दिया और तुरंत मैंने उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर दिया तो मेरा क्या फियर हो सकता है इसमें,
1: कि मैं आपको ओवरपावर कर
0: दूं। एब्सोल्युटली सिंपल, क्योंकि मेरे पास भी कोई आइडिया था और मुझे अब ये भय है कहीं आपका आइडिया एक्सेप्ट न हो जाए, कहीं आपका आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को या परिवार को या जो भी आपका आइडिया ना पसंद आ जाए, दैट इज माई फियर। और ये फियर है, अटैचमेंट मेरी किस चीज से है, अपने आइडिया से।
1: ओके, आइडिया,
0: बिकॉज वो मैंने भी तो एक आइडिया क्रिएट करके रखा था ना, और अब मुझे ये फियर है कि कहीं आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हो जाए, और अटैचमेंट मेरी है अपने आइडिया से कि मेरा आइडिया वॉज
1: द बेस्ट,
0: I had come up with that idea, I have been thinking over it for so long, इतना उसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया, और वो अच्छी बात है एनर्जी इन्वेस्ट करना, लेकिन करते करते करते उस आइडिया से अटैचमेंट हो गया, ये ही मैं हूँ, ये अगर एक्सेप्ट होगा मुझे खुशी होगी।
1: लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में मेरा आइडिया जो है वो सही है, इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो सही रिजल्ट देगा,
0: इट्स फाइन। तो ये भी नहीं है कि हम अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दें और दूसरे के आइडिया को ही एक्सेप्ट कर लें। दिस इज वेयर इट विल कम द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा। अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसाइज तब करूंगे जब भय है। अगर मुझे श्योर है,
1: अच्छा हाँ, जहां मुझे ये श्योरिटी
0: है, सी इट्स ऑल दैट वे, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, जहां मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू नो इट्स नॉट एरोगेंस, सी एवरीवेयर देर इज अ टू
1: लाइन,
0: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, स्वाभिमान, अभिमान, ये बहुत थिन लाइन है, हमें पता ही नहीं चलता, हम हॉप स्किप एंड जंप दोनों के बीच में करते रहते हैं। जहां हर्ट है, जहां दर्द है, जहां पेन है, इट्स ईगो, जहां स्टेबिलिटी है, यू नो, ये किसी और से डिस्कस करने की भी चीज नहीं, ये अपने आप अंदर पता चल जाता है। जहां स्टेबिलिटी है, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, एकदम स्थिति स्थिर है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अपने स्वमान में हूं, स्वाभिमान में हूं। जहां कुछ नहीं कहते, उन्होंने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई,
1: मेरे अहम को ठेस
0: पहुंचाई, ठेस पहुंचाई मतलब यू हर्ट मी, ठीक है, तो यू हर्ट मी, दैट मीन्स आई वॉज नॉट इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कुड कम एंड यू कुड ओवर
1: टेक ओवर,
0: दैट वॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्रिटिसाइज हम तब करते हैं जब हमें भय होता है कि इनका आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आ जाएगा, और अटैचमेंट मेरी मेरे आइडिया से थी कि माय आइडिया वाज वेरी गुड, मैंने अपने अस्तित्व को उस आइडिया के अंदर ही जैसे खो दिया था कि ये ही मुझे खुशी देगा। नाउ व्हाट डू आई हैव टू लेट गो, ये आइडिया अच्छा था, हो सकता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इट्स फाइन।

0: अपने स्वमान में है, आप ओपन है, आप अपने आइडिया से अटैच्ड नहीं है। जहां आप अपने आइडिया से अटैच्ड होंगे, पहली बात आप मेरे आइडिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस थॉट से कि मैं आपका आइडिया बेस्ट है। यू नो, जब आप अटैच्ड हो जाएंगे इस थॉट से कि मेरा आइडिया बेस्ट है आपका, तो आप दूसरे के आइडिया को एक ओपन माइंड से देख भी नहीं पाएंगे।
1: इसका मतलब जो आइडिया मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है इस सिचुएशन में, उसके साथ भी मुझे अटैच नहीं होना है, इवन इफ आई नो दैट दिस इज माई बेस्ट
0: राइट। सी अगेन, दिस आइडिया इज योर बेस्ट, ये आपका बेस्ट आइडिया है, बट नो वेयर इज इट रिटन के यू नो दैट मीन्स के कोई और एक अच्छा आइडिया नहीं ला सकेगा। तो आई कैन से दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट, ये मेरा बेस्ट था, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: जिस दिन मैं ये सोच रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट, तो मैं क्लोज हो गई।
0: यस, दैट इज ईगो। दिस इज माई बेस्ट, दिस इज माई पोटेंशियल, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट ना। अब फर्क क्या आएगा कि यू विल एक्सेप्ट कि मेरी अभी इस समय, वर्तमान समय इतनी कैपेसिटी है, दिस इज माई बेस्ट एंड आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड यू आर कंटेंटेड, आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। अब दूसरे ने आकर कोई और सुझाव दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अगर आप स्टेबल है, स्टेबिलिटी में है, आप अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे कि मेरा आइडिया ये भी ठीक था, हो सकता है इनका आइडिया भी ठीक हो। इट्स एन ओपन माइंड। नाउ लीव इट कि किसका, वेदर इट्स अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी और वेदर समबडी एल्स इज इवेल्युएटिंग कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा था। लेकिन जहां आपने सोच लिया कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट था, तो आपने दूसरे के आइडिया को तो स्वीकार ही नहीं किया, आप अपने आइडिया को पकड़कर बैठ गए और आपका मेरे प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा, अच्छा ये मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना इन्होंने सोचा है, आज तक इन्होंने कुछ किया है, मैंने क्या। तो एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जहां खुद को नहीं रिस्पेक्ट किया, वहां दूसरे को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकते। नाउ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, बिकॉज सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको फियर है, पता नहीं रियली मेरा आइडिया अच्छा है, इंटरनली बाहर ही बोलेंगे कि सच में अच्छा है या हो सकता है इनका ज्यादा अच्छा है, ओपन माइंडेड नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मेरा अच्छा है, हो सकता है आपका भी अच्छा हो, लेट्स डिस्कस, हो सकता है इस बार एक्सेप्ट आपका किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा गलत था। यू नो, इट्स बहुत हानिकारक होता है जहां हम, अगर एक बार हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तो मेरा बेकार है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग। ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है दोनों, दैट्स व्हाट वी सेड, यहां स्टेबल है, इधर चले जाना कि नहीं मेरा ही बेस्ट है, ये भी ईगो हो गया, और ये सोचना अच्छा तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं है, दूसरों का ही आइडिया हमेशा अच्छा होता है। अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडिया पर विश्वास होना, अपने आप पर विश्वास होना, ये अच्छा है, लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इसका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खराब है। अपने आप को डैमेज नहीं करना, दूसरे को भी डैमेज नहीं करना।
1: लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इससे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ अपने आइडिया से भी, इवन इफ मैं जानती हूँ कि वो आइडिया अच्छा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे इनकी अगर हम देखें, कि मुझे मालूम है कि वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब मुझे पता है कि देर इज नो नीड टू क्रिटिसाइज,
0: दैट्स फाइन, दैट्स द सिंपल थिंग, मुझे पता है, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर मैं हर्ट क्यों हूं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे डीप सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम हर्ट क्यों बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में, आपने मुझे हर्ट किया, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो गई, आपने ऐसा कहा तो मैं हर्ट हो गई। फंडामेंटल लॉ है, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को सुन लेती हूं और उसके साथ मैं अंदर जो करती हूं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, आई हर्ट माई सेल्फ, यू डोंट हर्ट मी, आई यूज यू टू हर्ट माई सेल्फ, यू कांट हर्ट मी, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट। मन को तकलीफ हो रही है ना, आप मेरे मन तक तो पहुंचे नहीं रहे, आप मुझे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, आप मुझे फिजिकली उठ के मार लीजिए,

0: आप मेरे मन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? डू यू हैव द पावर?
1: नो, इट मीन्स लाइक व्हेन आई से समथिंग टू यू, लाइक
0: यू से ना, तो यू से इट, बोल ही हुए ना आपके, मैंने उसको स्वीकार किया, अब मैंने उसके साथ क्या किया, वो तो यहां होगा ना काम. आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है. दिस इज डीप स्लीप एंड वी गो ऑन लिविंग आर लाइफ इन दिस स्लीप एंड दैट इज वाई वी आर विक्टिम. उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया. नोबडी कैन हर्ट मी, आई कैन यूज पीपल टू हर्ट माई सेल्फ, बट डोंट ब्लेम अदर पीपल, दे आर नॉट हर्टिंग यू, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ. सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी.
1: Who is being hurt? You know, like, see, if you say something,
0: again, it's the mind which is doing the work. मेरी सास ने ऐसा कहा, सबके सामने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था ना, अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. यू नो, इट्स माई वर्क, ये मेरी थॉट है. अपने आप को क्या समझते हैं? खुद तो वो आता नहीं है, खुद तो उनको बनाना नहीं आता. मैंने जो बनाया उसको सबके सामने वो
1: कुछ नहीं कर लूं, कुछ नहीं होगा,
0: ये कभी खुश नहीं होंगी. उन्होंने दो सेंटेंस कहे होंगे सिर्फ, हम कम से कम 200 सेंटेंस अपने आप को कहते हैं अंदर. यू नो, वर्बली आप दो या चार सेंटेंस से ज्यादा किसी को नहीं कह सकते हो, लेकिन जो मन बातें करता है अंदर अपने आप से,
1: वो घंटों बातें,
0: तो घंटों और कितने दिन, तो कितने सेंटेंस होते होंगे. एंड दैट इज कॉजिंग द पेन. द अदर प्रोसेस कुड बी, उन्होंने ये कहा, सी इट डजेंट मीन के हम निग्लेक्ट करें. सपोज यू आर द मदर इन लॉ, ओके लेट्स सी इट राइट नाउ,
1: इग्नोर कर,
0: आई कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज हो सकता है कि आप, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे रियली सही मायने में करेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जान पूछ के क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो प्रोएक्टिव अप्रोच वुड बी, इन्होंने कहा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, लेट्स से आपने कहा ये कप ठीक से नहीं रखा हुआ, ओके, तो वेरी डिटैच्ड चेक, क्या ये कप ठीक से रखा हुआ था? अगर नहीं, आई एम सॉरी, ये कप ठीक से नहीं रखा था, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी, यू नो, प्रोएक्टिव. अगर मैंने देख लिया कि वो कब ठीक से रखा हुआ है, इन्होंने जान पूछ कर सिर्फ सबके सामने मुझे वो करने के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो फिर मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा रोल था, वो मैंने ठीक से प्ले किया. देर इज नथिंग दैट आई हैव टू चेंज इन दैट. आपकी कोई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी अंदर, आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते, क्योंकि ये भी एक बिलीफ है कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर
1: हो जाएंगे,
0: विच इज द डीपेस्ट स्लीप. जितना हम नीचे दूसरे को गिराते हैं, हम बहुत ज्यादा नीचे उतरते जाते हैं, इवन इफ वी वांट टू सी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अगर यहां चार लोग और बैठे हो एंड आप सास हैं और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लोग पहले आपके बारे में सोचेंगे कि ये कैसी सास है, सबके बाद में भी तो बोल सकती थी. तो वी थिंक कि ये लोग सोचेंगे कैसी बहू है ना, इसको कुछ करना नहीं आता, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. सब लोग सोचेंगे ये कैसी मदर है, ये बाद में भी तो बोल सकते हैं.
1: दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ, यू नो, व्हिच वी एक्चुअली कंटिन्यू टू लिव,
0: वी कंटिन्यू टू डू इट. सो इफ आई द डॉटर इन लॉ नो इट, आई शुड बी ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ज्यादा हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. पहले इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचूं. अगर मुझे पता है मैंने ठीक किया है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था. आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आएगा, मुझे आप पर रहम आता है. कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे सामने, कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है. बट वी डोंट से दिस, we not to say this to the other person, लेकिन ये understanding दूसरे के लिए, एक जो आपने कहा ना सहानुभूति, compassion, हम understand कर ले कि दूसरा इस time ऊंचा नहीं उठ रहा, अंदर कोई डर है उसके.
1: लेकिन अगर हम कह देंगे तो अगेन हम हर्ट करने की कोशिश करेंगे.
0: ये कहना तो गलत हो जाएगा.
1: That's what I'm saying, you know, this is
0: again hurt.
1: You know, we'll, it's a process of, you know, giving it back.
0: See, हम दूसरे का ईगो नहीं कम कर रहे हैं, हम अपना कम कर रहे हैं. हम किसी और को नहीं, क्योंकि अगर हमने कह दिया तो वो और डिफेंसिव हो जाएंगे. कहेंगे अच्छा, एक तो गलती की, ऊपर से उसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. सो यू विल रिएक्ट इवन मोर. इंटरनल प्रोसेस हमेशा अपना ही किया जाता है, किसी और का करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगी कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, मैंने जो किया वो भी ठीक. सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो स्थिरता रहेगी, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैंने जो किया ठीक, और आप जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान रखते हुए ये फील करेंगे कि आप भी अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग

0: दैट सीट वो कप डिफरेंट लगेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते. हो सकता है ना यहां से ये ठीक लगा, मतलब ये एक बहुत स्थूल चीज है लेकिन हर परिस्थिति में, लेकिन आपके सीट पर बैठो तो ये गलत बैठा हुआ है शायद, तो शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़े. तो दैट्स रिस्पेक्ट.
1: अवेकनिंग की जो बात आपने की, क्योंकि सुप्त अवस्था की बात करें, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे नहीं चले थे तब तक हम ये जानते नहीं थे कि हम तो सोए हुए हैं एक्चुअली अंदर, और अंदर इतना अंधेरा हम सोचते हैं जहां की रोशनी होनी चाहिए. तो डीपेस्ट फियर्स की अगर हम बात करते हैं,
0: किसी भी मनुष्य में जो सबसे गहरा भय है वो है मृत्यु का. सबकॉन्शियस, वेरी डीप. ये नहीं कि हम बहुत सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इट इज फियर ऑफ डेथ. और फियर ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द
1: बॉडी.
0: इस शरीर से इतना लगाव है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली. हमारा इस शरीर से इतना लगाव है, जो हमने कहा अटैचमेंट जब होती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें खो देते हैं. तो हम आज क्या समझते हैं, मैं कौन हूं? जैसे हमने कहा मैं, तो कौन सी पिक्चर सामने आएगी इस शरीर की? जबकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा पांव आज दुख रहा है तो मेरा है ना, फिर भी मैं कहते हैं ये पिक्चर सामने आएगी. अपने अस्तित्व को इसके अंदर खो दिया. आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी. आई थिंक आई एम द बॉडी. और इसीलिए मैं उस भय में जीती हूं कि कहीं मुझे कुछ न हो जाए. एक्चुअली मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो इस
1: बॉडी
0: शरीर को होगा, और वो होगा भी. वो कितना भी डर में रहे, जिस दिन वो होना है वो होना है. लेकिन अटैचमेंट है ना, तो वी लिव आवर लाइफ इन दैट फियर. डिटैचमेंट ये है कि मैं तो एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं. ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मैं नहीं हूं. मैं इस शरीर को यूज करती हूं. जैसे ये डिटैचमेंट आ गया, मृत्यु का भय फिनिश्ड. जहां मृत्यु का भय खत्म हो, और ये सिर्फ समझ के नहीं, अनुभव से होता है स्टेप बाय स्टेप. जहां मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वहां धीरे धीरे बाकी सारे भय भी खत्म हो जाते हैं.
1: सिस्टर शिवानी, जो हम ये पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जागने की, अभी तक जब भी हम बात करते थे जागने की, डिटैचमेंट की, आई द सोल को रियलाइज करने की, खुद को पहचानने की, तो मुझे लगता है बहुत से दर्शक और मैं भी कहीं ये सोचती थी कि ये थोड़ा जिंदगी के लेटर स्टेज में आना चाहिए ये पूरा जो भी प्रोसेस है. लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसका मतलब तो हम जिंदगी जो है वो सोते हुए गुजार देते.
0: सही बात.
1: हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्त अवस्था में हैं, तो अवेकनिंग कब होगी? अवेकनिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अवेक?
0: द अर्लियर द बेटर. बचपन से ही अगर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं कौन हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये क्लैरिटी अगर हो जाती तो फिर अटैचमेंट बिल्डअप होने. अभी क्या हो रहा है, अटैचमेंट इतनी सारे बिल्डअप हो रही है. सो वी आर हैविंग टू गो बैकवर्ड. सारी बिल्डअप हो गई, फियर्स बिल्डअप हो गए. अब वी आर हैविंग टू डू द हार्ड वर्क, अंडू करना है. लेकिन अगर बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती मैं कौन, ये मेरा, अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होती ना. बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को नहीं कहते, कहते हैं भूल जाते हैं. वी आर नॉट सेंसिटिव, जैसे हमने कहा हर्ट नहीं होते. जैसे जैसे बड़े होते हैं, इतनी सारी चीजें, लेबल्स, पोजिशंस, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, जितने बढ़ते जाते हैं अटैचमेंट्स बढ़ती जाती हैं. मैं अपने अस्तित्व को खोती जाती हूं उतना ईगो. बच्चे में कोई ईगो नहीं होता. एब्सोल्युटली. इसलिए बोलते हैं गो बैक टू योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब अपने ईगो को निकाल दो. बच्चे में कोई ईगो नहीं है क्योंकि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है ना. उसने अभी तक उस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं बिल्ड अप की. जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना, ऐसा हो रहा था. क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, एक इमेज बना ली है. मैं कौन हूं, एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी, वो भूल गया. इमेज बिल्डअप हो गई है, मैं एक शरीर हूं, मैं एक वुमन हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ये हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं बहुत अच्छे इंजीनियर, मैं एक ये इतनी सारी चीजें जो हूं. तो हर टाइम आई एम लुकिंग फॉर ये कौन है जो मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है. अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इमेज है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, तो जैसे ही किसी ने कुछ आया मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर दिया. लेकिन अगर ये डिटैचमेंट बिल्डअप हो गई थी कि मैं एक एनर्जी हूं, ये तो मेरा सिर्फ एक रोल है, ऐसा नहीं, ठीक है, चेंज, लाइफ वुड बी वेरी इजी.
1: वंडरफुल. तो यू सेड ये जो अवेकनिंग है, जागरूकता है, ये जो जागना है, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए. और बचपन से ही अगर हम इस प्रोसेस पे चले तो अटैचमेंट होंगे ही नहीं. लेकिन अब इस वक्त बचपन में लौटना मुश्किल है, अंडू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जागा जा सकता है?

0: किस तरह जाग पाएंगे?
1: हम लोग सभी तो जागने की कोशिश नहीं कर रहे, नंबर वार हम लोग सब यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी नींद से जागे।
0: बिल्कुल, तो अगली कड़ी में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: जान लिया हमने बहुत कुछ अपने बारे में, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस सुप्त अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को जानते हुए भी सोए हुए हैं, तो भाई जागना कैसा है ये जानने की कोशिश अगली कड़ी में जरूर करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर खुद को तलाशने के इस सफर को जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्त अवस्था से हम जागृत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, हमारी संस्कृति में इतनी कहानियां हैं, इतने किस्से हैं कि उन किस्से कहानियों को अगर हम जीवन में सुन करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सर्वोच्च बन जाता है। क्योंकि इन सभी किस्से कहानियों का जो मूल सूत्रधार होता है या जो किरदार होता है, उसको कई आदर्शों से परिपूर्ण दिखाया है। जैसे पांडवों की कहानी, ऐसे ही रामायण। कुछ समय से देश में श्री राम जी का बहुत ही ज्यादा गायन हो रहा है, और ऐसे श्री राम को राम जैसा बनाने वाली उनकी माँ कौशल्या, उनकी धरनी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी जिनको आज हम हमारे इस कार्यक्रम में लेकर के आए हैं, उनसे हम मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे नए पहलुओं को हम जानेंगे जिनसे आज तक हम अनभिज्ञ थे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपका स्वागत करता हूँ, और स्वागत करता हूँ हमारे बीच में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती रजनी रजक जी को। रजनी रजक जी नारी शक्ति पुरस्कार से 2019 में सम्मानित की गई। इसके कई दशकों पूर्व से ही, बचपन से ही वे एक बहुत ही उम्दा छत्तीसगढ़ी गायिका रही है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे लोक विधाएं हैं जिनको उन्होंने अपने पिता और अपने परिवार से सीखा और उस विधा को आगे बढ़ाया। इसी सिलसिले में भिलाई स्टील प्लांट में उन्हें अपने नौकरी भी प्राप्त हुई, और इसी नौकरी के पद पर रहते हुए उन्होंने कई लोगों को कला के मार्ग पर अग्रसर किया और छत्तीसगढ़ के लोक कलाओं को पूरे देश नहीं बल्कि दोस्तों पूरे विश्व के मंच पर प्रचलित किया, उजागर किया। वर्ष 2023 में बर्लिन में जर्मनी में हुए दिव्यांग ओलंपिक्स में, जो विशेष ओलंपिक्स होता है, उसमें भारत की तरफ से वो विशेष प्रस्तुति देने के लिए गए थे। कई देशों का भ्रमण करते हुए कला को लेके जाते हुए आज वो हमारे बीच में पहुंचे।

0: ये रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आइए उनका स्वागत करते हैं। रजनी जी, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, अभिनंदन आपका।
0: पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे बीच में आप आए और हमारे श्रोता साथियों से मिलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपने मौका दिया, इसका मैं अभिनंदन करती हूँ।
0: तो रजनी जी, शुरुआत हम करना चाहेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की, एक ऐसे बेटी की कहानी की जिस बेटी ने न केवल अपने माता पिता का लेकिन अपने देश का, अपने समाज का और न जाने कितनी पीढ़ियों का नाम रोशन किया है। जो पीढ़ियों ने इन लोक कलाओं को अपने में संजो करके रखा लेकिन कभी रोशनी पे नहीं आ पाए, लेकिन आपने उनकी कला को बाहर लाया, तो इसलिए आपका श्रेय तो बहुत उम्दा है। आपकी कहानी जानना चाहेंगे आपकी जुबानी।

मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़ मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़ मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। पूछे जब कोई मुझसे, पूछे जब कोई मुझसे क्या लोगे जन्म दोबारा, हर बार कहूँगी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। मैं गौरवान्वित होती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, उस छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ श्री प्रभु रामचंद्र जी की माता माँ कौशल्या ने जन्म लिया। मैं उस छत्तीसगढ़ की बेटी होने का मुझे गौरव महसूस होता है जहाँ बेटियों के सम्मान में, नारियों के सम्मान में छत्तीसगढ़ में तीजा त्योहार मनाने की परंपरा है। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ, उतई मेरी जन्म स्थली है और मेरा ससुराल जो धर्म स्थली है, और भिलाई इस्पात संयंत्र जहाँ मैं भिलाई स्टील प्लांट में लोक कला प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ, समाज सेविका के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। केवल यही कहूँगी अपने परिचय के लिए कि छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी काम हवे कलाकारी, कला संस्कृति संवर्धन के हावे जिम्मेदारी, रामायणी कौशल्या गाथा गाथा ढोला मारू, 24 बरस माँ देखे नहीं हूँ आप जैसन मयारू, आप जैसन मयारू। जन्म उतई में हुआ और एक कलामय रजक परिवार में, मेरे पिता जी पी रजक जी जो गीतकार संगीतकार अभिनेता बहुत बड़े छत्तीसगढ़ अंचल के जाने माने हस्ताक्षर रहे, मेरी माता विमला रजक वो भी एक अभिनेत्री, और मैं चार बहन एक भाई और सभी हम सब कलाकार हैं और अपने अपने क्षेत्र में सभी पारंगत हैं। बचपन से कलामय परिवार रहा और बचपन से कला मुझे विरासत में मिली, और जैसे स्कूली जीवन में भी मैं पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा, और जब भी मैं घर पे रहती थी तो हमारे गांव में आज भी देवारी महिलाएं आती हैं, लेकिन पहले कला संस्कृति सीखने का जरिया केवल वही था। देवार जाति जो माँ सरस्वती का उन्हें वरदान रहता है, वे नाच गा कर जीवन यापन करती हैं और बंदर नचाने के साथ साथ टेटू जिसको बोलते हैं गोदना गोदने के लिए लेख गाती थी, और गाती थी बड़े सुंदर ढंग से, कहती थी लनवो दई तुम्हारा खुची पतिया, ऐसे कहते दीवारों से सभी जन परिचित हैं। तो गोदना गोदने आती थी तो उनसे मैं गाना सुनती थी, कुछ पैसे देती थी। बहुत देवार जनजाति का बहुत प्यारा प्यारा संगीत है,

और इसी तरह मेरी मम्मी, मेरी बड़ी माँ, मेरा पूरा परिवार कला में परिवार है। तो मैं बड़ी माँ के साथ नाचा गम्मत देखने जाती थी। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो सुहा और बड़े जो भी तीज त्योहार होते थे, दिवाली त्योहार में सुहा का होना, गौरा का होना, भोजली जवारा, उन सब में जाती थी और मन में रहता था कि मैं उनको सीखूं। तो जब सुबह सुबह गौरा देखने के लिए जाती थी तो गौरा का वो जो गौरा पूजन की जो 8 प्रकार 9 प्रकार की जो उनकी परंपराएं होती थी गौर जनजाति का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था।

के और तीसरे अपने भाई बहन के साथ और पिताजी के साथ छत्तीसगढ़ के एक धरोहर है गम्मत नाचा। गम मत कर मतलब गम्मत और नाचा, ये जो त्रिवेणी संगम है जिसमें अभिनय, नृत्य और गायन और संगीत का जो समावेश होता है वो छत्तीसगढ़ की धरोहर है और उससे ही लोक गीत संगीत लोक नाट्य का जन्म हुआ है। जो नाचा जो होता है वो रात के 11 बजे से शुरू होकर सुबह के 7 बजे 8 बजे तक चलता है। तो मैं पिताजी के साथ नाचा गम्मत देखने के लिए भी जाया करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नाचा की एक खास बात मेरे मन को भा गई, नाचा में पुरुष कलाकार महिला बनकर नजरिया बनकर गाना गाते थे और कहते थे

ये बात मेरे मन को तरंगित करती थी कि ये पुरुष कलाकार जब नारी बनकर नारियों की इस तरह के बखान करते हैं, तो मैं तो नारी हूँ और एक नारी को भारत की जो बेटी है, छत्तीसगढ़ की जो बेटी है, अपने बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कला संस्कृति के लिए, यशस्वी भारत के लिए कुछ न कुछ करने की मन में ही शुरू से लालसा थी। तो मैंने अपने उस गीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ लिखा, नारी

तो मेरी पढ़ाई उतनी नहीं हुई, 12वीं तक। उसके बाद मैं कॉलेज तो प्राइवेट करती रही। जैसे ही पढ़ाई संपन्न हुआ और भिलाई इस्पात संयंत्र ने मुझे मेरी इस प्रतिभा को देखते हुए एक लोक कलाकार के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र ने मुझे नौकरी दी और लोक कला प्रभारी के रूप में एक उत्तरदायित्व दिया। आज भिलाई इस्पात संयंत्र विगत 43 वर्षों से छत्तीसगढ़ लोक कला का महोत्सव का जो आयोजन करती है, भारत का ये पहला महोत्सव है जो अपनी कला संस्कृति के संवर्धन के लिए जो ये जारी है, उसमें मैं लोक कला प्रभारी मन संचालन से लेकर कलाकारों को संयोजित करना उसे प्रस्तुत करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन करने का अवसर भिलाई इस्पात संयंत्र ने दिया। 1985 में मैं ज्वाइन की भिलाई इस्पात संयंत्र और 1987 में वीनस बॉम्बे से मेरा एक धमाका कैसेट रिलीज हुआ, जिसमें बहुत ही एक मेरा लोकप्रिय गीत हुआ और मैं लोक गायिका के रूप में स्थापित हुई। गीत तो सभी चर्चित हुए, लेकिन एक गीत ने जिसने मुझे एक नाम दिया जो भारत के कोने कोने पर बजा। ऐसी कोई शादी ब्याह नहीं, ऐसा कोई कॉलेज का फंक्शन नहीं या कोई भी समारोह हो, छत्तीसगढ़ अंचल में ही नहीं भारत के कोने कोने में वो गीत बहुत बजा।

राजा दुधरु जवान मोरे खाली बीरो पान जमा लैची लवांग पान खैले बे। और इस धमाका के सिर में उतई की पली बढ़ी मैं बेटी हूँ और उतई बाजार जो मवेशियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध बाजार है जिसको हम लोग स्कूली में कक्षा चौथी पांचवी में भी पढ़ते आए तो वो गीत मेरा भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

यार मेरे पिताजी का लिखा हुआ ये गीत है और मेरे द्वारा गाया हुआ गया गीत है। इसके पश्चात हुआ कि कला यात्रा मेरी जारी रही। 1990 में भुक्सीडी के निवासी और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी बहुत ही सरल सहज और बेहद हैंडसम सुरेंद्र रजक जी से मेरी शादी हुई और उनका साथ परिवार का साथ जो मुझे सास ससुर देवर ननद पूरे ससुराल के लोग, ये छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी है। बेटियां तो पहले मायके में बहुत आगे कुछ जो भी करना चाहे स्वतंत्र होती हैं, लेकिन मेरा ससुराल मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे माता पिताजी

माँ ससुर मेरी कला संस्कृति में मेरे कार्यक्रम के लिए जाना, मंच पर जाना उन्हें गौरवान्वित करता था और मेरे पति का सहयोग हमेशा मिला और आज जो कुछ भी हूँ सुरेंद्र रजक की बदौलत हूँ। रही बात 1991 में मेरी बेटी रसु संस्कृति का जन्म हुआ और बिटिया के जन्म के बाद फिर मेरी जिम्मेदारी बेटी का लालन पालन, नौकरी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और साथ ही साथ जो मुझे कला विरासत में जो मिली थी लोक कला मंच तुलसी चौरा जो मेरी मातृ संस्था है इनके माध्यम से और साथ ही साथ कि छत्तीसगढ़ के और बहुत सारे तमाम संस्थाएं थी उनको हम लोग मैं पिताजी और मेरे पूरे परिवार जाकर हम सपोर्ट करते थे कि हमारा दायित्व है कि हम जिस क्षेत्र में उन कलाकारों को आगे बढ़ाएं उस संस्थाओं को आगे लेकर जाएं। इसी तरह आगे बढ़ती रही। 2004 में भारत सरकार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मुझे राजपथ दिल्ली में जाने का अवसर मिला और वहाँ 22 राज्यों के कलाकारों से जो मिलने का मौका मिला और राजपथ में झांकी के साथ चलने का मौका मिला ये मेरे जीवन का बहुत ही स्मरणीय पल है और 22 राज्यों के साथ फिर छत्तीसगढ़ की इस बेटी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला ये जीवन का बहुत ही सुखद पल रहा। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मेरे मन में एक बात आई कि तुलसी चौरा और धमाका केसेट के माध्यम से मैं संपूर्ण भारत कहूँ या छत्तीसगढ़ में एक लोक गायिका के रूप में मेरी पहचान बनी। फिर भी मुझे लगता था कि ये तो मुझे विरासत में मिली संस्कृति है, मेरे माता पिताजी और सभी मेरे गुरुओं का योगदान है, मेरी अपनी क्या है पहचान। तो मैंने अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए जब हम यशस्वी भारत की बात करते हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति को दूसरे प्रदेश के लोग अपनाएं, हम दूसरी संस्कृति को अपनाएं और हम सब भाई भाई हैं, अनेकता में एकता जो हमारी राष्ट्रीय एकता का जो प्रतीक है उसे अपनाते हुए मैंने राजस्थान की गाथा ढोला मारू जिसे हम छत्तीसगढ़ में रेवा परेवा किस्सा के नाम से जानते हैं। मेरे बड़े पिताजी दोनों आँख से देख नहीं पाते थे सूरदास, लेकिन वो लोक कथा गाथाओं का उनके पास भंडार था। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गीत नहीं होली त्योहार या फिर जो भी उनके बिना अधूरा रहता था। तो राजस्थान की इस गाथा को मैंने छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया और मैं धन्यवाद देती हूँ छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग का जिन्होंने नागपुर जोन सांस्कृतिक मंत्रालय से ढोला मारू पर मैंने शोध किया और लगातार 2-3 महीने उस गीतों को रूपांतरण करके ढोला मारू गाथा जो सप्त खंडों में विभाजित है और ढोला मारू एक प्रेम गाथा है, प्रणय गाथा है, राजा नल के बेटे ढोला का और मारू की प्रणय गाथा है और प्रेम के बिना तो जीवन ही अधूरा है। प्रेम चंदन है, समर्पण और त्याग उसकी सुगंध है जिससे व्यक्ति का जीवन सुरभित होता है और प्रेम से ही जीवन का सारा संसार जुड़ा हुआ है। तो इस प्रेम गाथा को आगे बढ़ाई तो छत्तीसगढ़ में ढोला मारू गाने की एक विशिष्ट विधा है जिसको आप सुन के कहेंगे कि हाँ ये ढोला मारू सुवा गाने की जैसे

0: अगर आप हरी हरी नैना कहते हैं तो ये लोगों को लगता है कि ईसु है। अगर हम कहते हैं सनना नना मुर नना हो ललना, इस गीत को सुनते ही लोगों के मन में आता है कि ये पंथी है। और छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधाएं, तो रेवा परेवा गाने की एक विशिष्ट विधा है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस विशिष्ट विधा को ही केवल लेकर चलूंगी तो निरस्ता आएगा। तो सब जो अधिक लोक गाथा है ढोला मारू, उसको मैंने छत्तीसगढ़ के 36 रंग दिए, 36 लोक गीतों का समावेश करके उस शैली को मैंने अपनाया। जैसे रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मारा के बिन माय रे आला बेला ढोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संग भरी ढोला।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कहानी जो है जीवन का इतने विस्तार से हमारे सामने संगीतबद्ध तरीके से रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी, आपने जो अपने जीवन की गाथा हमारे सामने पेश की वो भी इतने सुंदर, मैं कहूँगा काव्य तो था ही उसमें सुंदर, लेकिन उसमें जो भाव है, जो संगीत है, जो सुर है, वो एक ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर है कि मन कर रहा था कि केवल आपको सुनते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमारे श्रोता साथियों के मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी है, तो हम शुरुआत करेंगे कुछ छोटे मोटे सवाल। जब आपने बताया कि आपके पिता जो है वो ऑलरेडी एक

0: न केवल आपके पिता लेकिन आपका पूरा परिवार ही जो था वो कलामय था, तो ऐसे में कला का जो प्रचार है आपके अंदर होना वो तो स्वाभाविक था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीज अधिक हो जाती है तो लोग उससे ऊब भी जाते हैं, और विशेषकर ऐसा देखा गया जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो देखते हैं कि पूरा परिवार ही इस चीज में डूबा हुआ है तो उनको कभी कभी मन करता है हम कुछ अलग करें। आपको कभी ऐसा मन नहीं किया कि कुछ अलग करते हैं? परिवार में तो है ही कला का सारा संचार, लेकिन मैं कुछ अलग कर लेती हूँ, कला से अलग कुछ कर लेती हूँ, या कभी आप ऊब नहीं गए इस चीज से?
1: क्योंकि कला में परिवार, मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ अंचल के सिद्धस्थ कलाकार रहे, माता जी भी रही कलाकार और पूरे परिवार कलाकार, तो एक संपूर्ण कला में परिवार होने के कारण दिक्कतें भी तो कुछ आती थी, लेकिन एक जो आगे बढ़ने की ललक थी कि कला के क्षेत्र में स्थापित होना है और छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी पिताजी की रही और साथ ही साथ हम सबको, तो वो यात्रा फिर जारी रही। जैसे ही स्कूल से आते थे पिताजी हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे, गीत सिखाना, म्यूजिक करवाना, फिर स्कूली जीवन में प्रस्तुति दिलवाना, और फिर अलग अलग मंचों में हम सभी जाकर प्रस्तुति देते थे। घर का पूरा माहौल ही कला का मैं रहा, सपोर्ट रहा, इसलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए लोक कला मंच तुलसी चौरा के माध्यम से अलग अलग गाँव में जाकर और छत्तीसगढ़ के बाहर भी लोक कला का प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया।
0: तो मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि बचपन से ही आप कला में इतने मगन हो गए या आपके परिवार के चारों तरफ भी कला का ही संचार रहा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि वही वही चीज करना पड़ रहा है, कुछ और भी करते हैं, उबने का कोई रास्ता था या कला में आप पूरी तरीके से खो चुके थे?
1: उबने का कोई रास्ता नहीं लगा मुझे, क्योंकि कला में ही जीवन पूरा समर्पण रहा। मैं चाहे पढ़ने के लिए जाती रही हूँ, चाहे पानी भरना हो, चाहे घर का काम करना हो, मेरे आसपास के लोग मेरे, मैं 24 घंटे गुनगुनाती रहती हूँ। उस समय जब आकाशवाणी से जो गीत बजते थे उन्हें सुन सुन कर भी गुनगुनाती रहती थी, तो जब मैं घर पे नहीं रहती थी तो मेरे आसपास की काकी भाभी सभी हुए कहती थी अरे आज हमारा सुर श्रृंगार नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी में सुर श्रृंगार के नाम से छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम आता था। और जो मैं एक प्रयोगवादी कलाकार रही, क्योंकि शुरुआती दौर पे मैं लोक गीतों में जुड़ी रही, छत्तीसगढ़ में जितनी अधिक धान की किस्में हैं उससे भी अधिक, कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में बहुत 36 प्रकार की विधाएं, चाहे सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी, पंडवानी, भोजरी, जवारा, न जाने कितनी विधाएं हैं, तो इन गीतों को गाना और सीखना और कलाकारों को बुलाना, उनका रिहर्सल करवाना और मंचित प्रदर्शन देना, ये समय ही नहीं बचता था कि उबने का समय ही नहीं रहा। और जब मैं 24 घंटे गाते रहती थी, चाहे मैं स्कूल जाते हुए पढ़ाई करना, घर में काम करते हुए, चाहे पानी भरते हुए गुनगुनाते रहती थी, उसी के समय हमारे छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन आकाशवाणी रायपुर से सुर श्रृंगार कार्यक्रम आता था जिसमें छत्तीसगढ़ी गीतों का प्रसारण होता था। तो जब मेरी आवाज मेरी भाभियों को या काकियों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को सुनाई नहीं देता था, तो लोग कहते थे अरे आज हमारा सुर श्रृंगार नहीं घर पे, तो मेरा नाम लोग सुर श्रृंगार रखे थे। तो लोक गीतों का गायन और ये प्रस्तुतिकरण और प्रचार प्रसार लगातार चलता रहा तुलसी चौरा के माध्यम से और अनेक लोक मंचों के माध्यम से।
0: तो सुर श्रृंगार से नारी शक्ति पुरस्कार तक का जो सफर है आपका, वो मैं समझता हूँ एक रोमांचक सफर रहा है। ये एक चीज दर्शाता है कि जब परिवार में लोग जब अपने बच्चों की विधा को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसे सही दिशा देते हैं, तो वो व्यक्ति आगे चल करके, वही बच्चा आगे चल करके देश का नाम रोशन करने में बिल्कुल सहजता से रोशन कर पाता है। जैसे सुर श्रृंगार से नारी शक्ति पुरस्कार तक आपका सफर रहा है, ऐसे ही मैं समझता हूँ आज भी जो अभिभावक सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, आपके बच्चे में कोई भी हुनर हो, चाहे वो गीत कला संगीत का हो, नृत्य का हो, या पेंटिंग करना हो, या खेल कूद हो, किसी भी कला या विधा में आपका बच्चा अगर पारंगत नहीं है, थोड़ी सी भी झलक है, तो उसको पारंगत बनाने की ओर आप उसको मदद कर सकते हैं। जैसे कि रजनी जी के पिता ने, उनके परिवार ने, उनकी

0: साथियों ने, मामियों ने, सबने मदद की। साथियों, हम सुन रहे हैं आज नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित रजनी रजक जी को, जो कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही मशहूर लोक संगीतकार है। मैंने संगीतकार इसलिए कहा क्योंकि न केवल वो गायिका है लेकिन वो खुद संगीत रचती भी है, उनको सुर भी देती है और इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के नए संगीत के कलाओं को जन्म दिया है। उनमें से एक जो बहुत ही विशिष्ट है वो है ढोलामा, और हम सब तो इस कथा से बहुत ज्यादा परिचित हैं क्योंकि हम सब राजस्थान में हैं और राजस्थान की ये जो एक परंपरागत, मैं कहूँगा मशहूर प्रेम कहानी है ढोला मारू की, उस ढोला मारू की कहानी का सफर छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुँचा ये रजनी रजक जी ने हम तक सुनाया। लेकिन रजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कहानी में ऐसा क्या विशेष था जो आपने इस कहानी को अपना प्रेरक बनाया?
1: चूंकि ये ढोला मारू कहानी एक प्रेम गाथा है और प्रेम जीवन का सार है, और इस प्रेम गाथा के माध्यम से मैं लोगों को प्रेम के साथ जोड़ सकूं और इससे सारा संसार जुड़ा रहे, हर परिवार की कहानी है, हर गांव की कहानी, हर कस्बे की कहानी है और प्रेम से सारा संसार बंधा हुआ है, तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे इसे जन जन तक पहुँचानी चाहिए।
0: जब ढोला मारू की बात आती है तो जहाँ तक मुझे याद है कि ये प्रेम कहानी एक राजकुमार की और एक दूसरी राजकुमारी की थी, शायद कोई ऊंट का एक हिस्सा जो था वो ऊंट वाला था, दूसरा हिस्सा हाथी वाला था। तो कुछ आप गीत के माध्यम से हमें अगर इस बात को अगर और समझाए तो बड़ा मजा आएगा।
1: रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मारे बिनु माए रे, अलबेला ढोला ढोला मारू के किस्सा सुना रे संगवारी तुला, गर पिंगला के रेवा परेवा।

से मंत्र तंत्र में सिद्ध गढ़ पिंगला के रेवा परेवा रहे कहाँ, ओकर बसेरा कहाँ, का करते रेवा परेवा, मन के जहाँ रहे तेला कैसे घर, और भूत प्रेत के डेरा बसेरा ये ला कैसे मारा।

एक दिन के बाद ही राजा ढोला अपन संगी जमुरिया और सेवक करिया करिया जिला हमन ऊट गए थे। सेवक करिया सन बारी माँ थी और वो बारी किसम किसम के फल फलहारी फूले रहे आनी बानी महर महर ममहावत बगीचा हावे भागमानी। वो बगीचा माँ रेवा जादूगरनी के दासी के पहरा है। तब

0: किया है, संगीतबद्ध किया है। चूंकि मैं मेरी शिक्षा 5 विषयों पे एमए है, तो विशेष रूप से हिंदी साहित्य में अधिक रुझान रहा। मैं हिंदी जब कॉलेज में भी पढ़ती थी तो होता यह था कि कला में परिवार 24 घंटे प्रोग्राम देना और पढ़ाई करना, फिर बाद में नौकरी पढ़ाई के दरमियान कॉलेज में जब मैं थी तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक दिन पूरे एक कलाकार को मदद की जरूरत पड़ी पिताजी को, और उन्होंने हमें एक मंच में आने का आमंत्रण दिया। उसके दूसरे दिन मेरा कॉलेज का पेपर रहा हिंदी साहित्य का, तो हम रात भर प्रोग्राम करते रहे लोकगीतों का, और जैसे ही नाटक का ऐसा कुछ आता था समय बचा के रात भर 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक मैं प्रोग्राम की, और फिर सुबह आकर कॉलेज में अपना जब परीक्षा दी तो उस परीक्षा में भी हिंदी साहित्य का पेपर था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आने से मैं छत्तीसगढ़ी गीतों का भी कविता लिख के उसमें जो कॉलेज में भी उस तरह का व्याख्यान करती थी। तो ये कर मेरे पिताजी चूंकि कवि और लेखक रहे तो उसका कुछ असर मुझ पे ही हुआ है। तो मैं स्वतः अपनी शब्द विन्यास स्वतः लिखती हूँ, और ढोला मारू के इन गीतों को, इन लोक कथाओं को जो 7 खंडों में विभाजित है, उसे मैंने ही लिखा है। एक कुछ लिखने का प्रयास की
1: आपने कहा कि आपने प्रयास किया है, अगर प्रयास ही इतना उत्तम है तो फिर उसका अंजाम, जिसको आप अंजाम समझते हैं, वो क्या ही होता होगा। लेकिन साथियों यहाँ पर जानने वाली बात एक और है, मैं समझता हूँ आपके अंदर भी ये सवाल आ रहा होगा कि रजनी जी जो कि इतनी उम्दा लेखिका हैं, जो इतना उम्दा सुरबद्ध तरीके से गायकी को पेश करती हैं, कहानियों को पेश करती हैं, क्या उन्होंने केवल किस्से कहानियों पर ही अपना संगीत रचा है? लेकिन नहीं दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है रजनी जी ने सामाजिक मूल्यों पर, समाज के कई ऐसे किस्सों पर, कई ऐसे कारणों पर इतने सामाजिक गीतों का भी निर्माण किया है जिससे कि समाज के लोगों के अंदर जागृति आए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई कठिन से कठिन बात जिसे हम शब्दों में या कहें भाषणों के द्वारा या किसी को समझाया नहीं जा सकता, कला के माध्यम से उन कठिन से कठिन विषयों पर आसानी से बात रखी जा सकती है। और कई ऐसे कठिन विषय हैं जिन पे रजनी जी ने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए समाज के उन वर्गों तक अपने संदेश को पहुंचाया है जिन तक इन बात को पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था। इनमें से कई मुद्दे हैं, चाहे वो कोविड का मुद्दा हो, चाहे वो बेटियों के सम्मान की बात हो, चाहे वो नारियों के सम्मान की बात हो, चाहे बेटियों के पढ़ने और आगे बढ़ने की बात हो, पर्यावरण की बात हो या कोई दूसरी बात, हर वक्त रजनी जी जैसे कलाकार अपने कला के द्वारा देश को जगाते रहते हैं। रजनी जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे किसी एक विषय के बारे में, ऐसे कई विषयों पे आपने लिखा है, गाया है, लेकिन कोई एक ऐसा विषय जो आपके दिल के बहुत नजदीक है और जो आपको लगता है कि देशवासियों को उस विषय के ऊपर अपना रुझान होना चाहिए, देशवासियों को उस विषय के ऊपर अपना जोर भरना चाहिए, कौन सा विषय?
0: मैं यशस्वी भारत की बात करते हुए केवल 2 लाइन पहले तो ये कह दूं अपने लिखे शब्दों से

और यशस्वी भारत के लिए और भारत की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए वसुदेव कुटुम्बकम की यह धरती है। मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले योगदान हम नारियों की है और महिलाओं को आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। पहले महिलाएं घर से देहरी लांग नहीं पाती थी, लेकिन आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें महिलाएं आगे ना हो। सबसे पहले तो मैं प्रणाम वंदन करना चाहूंगी कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका मैं प्रणाम करूंगी। और मैं प्रणाम करती हूं ब्रह्म कुमारी संस्थान को, जो मेरे छत्तीसगढ़ की संयोजक दीदी आशा जी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे कला का क्षेत्र हो, डॉक्टर का हो, चिकित्सा का हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ रही हैं।

तो मुझे जो बहुत प्रिय लगता है वो मुझे नारियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, चाहे वो गांव की बेटी हो, शहर की बेटी हो, हर बेटियों को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि एक नारी सृष्टि का आधार होती है। जग जननी कहलाती नारी, नारी घर संसार है, राम कृष्ण ऋषि मुनि की माता, माँ सबकी आधार है। माँ चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालन करने वाली हो, माँ केवल माँ होती है और माँ की उपमा केवल माँ है। और मैं गौरवान्वित होती हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, उस छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ प्रभु रामचंद्र जी की माता माँ कौशल्या ने जन्म लिया है, और कौशल्या माता का संस्कृति और संस्कार इस छत्तीसगढ़ पर समाहित है। और ये बेटी तभी नारियों के सम्मान में, माता के सम्मान में, कौशल्या जी के सम्मान में कहती है।

कौशल्या गाथा तो बहुत लंबी है, लेकिन आखिर में ये कहूँगी दो लाइनें। छत्तीसगढ़ के भुइयाला कोटि कोटि प्रणाम माँ कौशल्या के कोराए, छत्तीसगढ़ के भुइयाला कोटि कोटि प्रणाम माँ कौशल्या के कोराए। जी हाँ भाषा के गा भगवान सही, एदे मान गुण बड़ा होते जी, बड़ा होते जी राम जहरी, एदे मान गुण बड़ा होते जी, बड़ा होते जी राम जहरी। रत्नावली के योगदान से तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। इसी तरह महिलाएं जो हैं वो प्रेरणा स्रोत बनकर हर क्षेत्र को आगे बढ़ाती रही हैं। और मैं चूंकि छत्तीसगढ़ की रजक समाज की बेटी हूँ, धोबी समाज की बेटी हूँ, जो एक सेवक समाज है जिसको हम लोग पौनी पसारी जाति कहते हैं, कि धोबी नाई और इसके बिना कोई समाज का चाहे सुख का काम दुख का काम नहीं हो सकता है। तो अपने सामाजिक बंधुओं को भी, बेटियों को, बहनों को भी यही कहती हूँ मैं, अरे चाहे झेरिया हो चाहे कन्नौजिया।

वो अपने बेटी और बहुओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को नहीं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, नारियों को आगे बढ़ने की, और ये हमारा कर्तव्य है। मैं सभी बेटी बहनों को ये कहूँगी, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, एक पंथ के राही हम सब चलते अलग अलग हैं, और एक चमन के पौधे हम सब खिलते अलग अलग हैं, एक दिए के बाती हम सब जलते अलग अलग हैं, और एक धरा के बेटे हम सब रहते अलग अलग हैं। इस धरा का हर बेटा हर बेटी, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी, किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत लगन के साथ अपने कार्य को करते रहे, अपने दायित्व का निर्वहन करे, और इस यशस्वी भारत को और भी आगे बढ़ाते हुए गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में मेरा यशस्वी भारत का नाम हो, इसकी जिम्मेदारी हम नारियों की भी है। मैं नारियों को यही कहती हूँ, उठो जागो मोर बेटी और बहनी, उठो जागो मोर बेटी और बहनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो।

0: तो बेटियों को आगे पढ़ने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आज बेटियों के लिए नए नए, चाहे महातारी वंदन हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी आ रही हैं जिसमें हमारी बेटियों के लिए कोई कमी नहीं है। हम छत्तीसगढ़ शासन का ही नहीं, राज्य सरकार का, मैं गौरवान्वित होती हूँ कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने महातारी वंदन की इस योजना के साथ नारियों को एक नई दिशा दी है और नए सूरज निकलेगा पूरे भारत में, और मोदी की सरकार पुनः आएगी और मेरा भारत यशस्वी भारत होगा, मेरी नारियां, मेरी बेटियां आगे बढ़ें, ये मेरी दिली तमन्ना है।
1: जी, आपने जब बात कही और आपने अपने इस उत्तर में कई बातों का मेरे लिए बहुत सुंदर उजागर किया है और प्रश्नों का, एक तो एक चीज मुझे ये समझ में आता है कि नारी जो है वो उत्थान के लिए प्रथम

0: पग है। अगर नारी का जो स्तर है समाज में वही ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार के उत्थान या प्रगति की बात करना बेजाय, क्योंकि प्रगति शब्द ही अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रगति करना है तो वास्तव में नारी की एक पूज्य अवस्था होनी चाहिए, उस अवस्था से नारी का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया रजनी जी 2019 में, जहां पर देश के 44 महिलाओं को सम्मानित किया गया, क्योंकि अलग अलग विधाओं से अलग अलग क्षेत्रों से देश को यशस्वी बना रही थी। और ऐसे में भारत सरकार ने 2019 में आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। जब ये पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, आपका जो जिम्मेवारी है वो तो बढ़ ही गया, क्योंकि आप प्रथम छत्तीसगढ़ की महिला नारी शक्ति पुरस्कृत, तो इस विषय में थोड़ा कुछ बताएं।
1: बिल्कुल, जब मुझे नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार के लिए जब मैं ड्यूटी पर थी और एक फोन आया कि आपका नारी शक्ति सम्मान के लिए चयन हुआ है, तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि ये पुरस्कार। फिर घर आके फिर बात हुई वहाँ के अधिकारियों से, तब पता चला कि मुझे नारी शक्ति सम्मान के लिए चयन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री और पूरे महिला बाल विकास विभाग की और तमाम ऊपर की जितने भी प्रशासन के लोग हैं, उनको मैं प्रणाम वंदन इसलिए करना चाहूंगी कि उन्होंने रजनी रजक को सम्मानित नहीं किया, बल्कि एक मेरी काबिलियत को उन्होंने आगे लेके आया। मतलब ये हर नारी शक्ति का सम्मान है कि अगर आपकी काबिलियत और आपकी उपलब्धियों को देखकर बिना कोई प्रविष्टि के मतलब आपका चयन होता है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चूंकि मैं लोक गायिका हूँ और भिलाई इस्पात संयंत्र में समाज सेविका के रूप में मैं पदस्थ हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद विषय रहा। तो मैं हर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती थी, चाहे शिक्षा के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, नागरिक महिलाओं के उत्थान के लिए, और मैं इधर लोक गायन भी करती रही। तो मुझे लगता था कि आखिर मुझे पुरस्कार किस लिए मिल रहा है, मैंने किस क्षेत्र के लिए। जब मैं दिल्ली पहुंची तो उन्होंने मुझे वो ढोला मारी, तब लगा जी कि एक भीड़ से हटकर काम मैंने किया कि छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं को, लोकगीतों को बहुत से कलाकार गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन अब जब आप भीड़ से हटकर कुछ काम करते हैं तब आपको ये सम्मान मिलता है। तो नारी शक्ति सम्मान जब मुझे मिला तो उस पल का मैं उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे जीवन का बहुत ही अस्मरणीय पल है, ताउम्र याद रहेगा। और मैं बहुत ही बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभी भी मन उस पल को याद करके बहुत रोमांचित हो उठा है।
0: आपके इस रोमांच को मैं और हमारे श्रोता साथी सब अनुभव कर सकते हैं कि कैसा होता होगा वो पल जहाँ पर अचंभित हो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि आपकी आशा भी नहीं की थी और आशा के बगैर आपको ये सम्मान मिला। कई बार होता है कि लोग कुछ अच्छा करते हैं और उसके लिए थोड़ा सा आशान्वित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छा करते रहता है और उसके अच्छाई का परिणाम उसे इस प्रकार के सरप्राइजेस के थ्रू मिलता है। लेकिन रजनी जी, मुझे यहाँ एक और चीज जानना था, जैसे छत्तीसगढ़ में कई लोक विधा जो है वो छत्तीसगढ़ जननी है कई लोक विधाओं की, चाहे वो बस्तर कहें, चाहे वो आप लकड़ी का काम कहें, चाहे आप कितने ही ऐसे अलग अलग विधाएं हैं लोक कला की। इनमें से एक नाम तो मशहूर है पंडवानी का, जहाँ पर पांडवों जो जीवन का
1: जी
0: तो उसे गाया जाता है। इसी प्रकार से आपने भी रामायण को आगे रखा और रामायण का तो कनेक्शन छत्तीसगढ़ से है ही, क्योंकि माता कौशल्या माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की बेटी थी। तो देखिए, रामायण की कथा को जब आप सामने रखती हैं तो आपके श्रोताओं में कुछ ऐसे समाज के लोग भी होते होंगे जो कि उस वर्ग से या रामायण को नहीं जानते या नहीं समझते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, या कहें सुनने वालों में कुछ यंग जनरेशन भी होते हैं जो युवा होते हैं जिनका धर्म या कहें धार्मिक बातों से थोड़ा सरोकार कम होता है, क्योंकि वो अपने काम का पढ़ाई और बिजनेस जॉब आदि में बहुत संलग्न होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों तक रामायण की बात को पहुंचाना जो कि थोड़ा सा उससे अलग रहते हैं, तो उन तक उस बात को पहुंचाना कितना कठिन लगता है और संगीत

0: क्यों सहज लगता है आपको?
1: एक तरफ से यह कठिन काम भी है और मुझे सहज इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं केवल एक लोक कलाकार ही नहीं बल्कि लोक मंच की उद्घोषिका हूँ और बहुत ही छत्तीसगढ़ के तमाम समाजों से मैं जुड़ी हुई, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मैं अध्यक्ष हूँ प्रदेश की, उसी तरह उड़ान संस्थान की संरक्षक हूँ और बहुत अलग अलग संस्थाएं हैं। तो अपनी बात को चूंकि ये जो संगीत जो होता है, संगीत में वो ताकत है, वो जज्बा है, संगीत संत और गीत के बिना जीवन का कोई काम नहीं चल सकता, तो संगीत के माध्यम से इसको ये बताने में बड़ी सहजता हो जाती है। तो वे संगीत के माध्यम से जुड़कर बिल्कुल राम की वाणी और राम की कहानी के साथ जुड़कर इस तरह से उन्हें स्वीकारना पड़ता है और प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों पे वो चाहे एक कदम सही एक पल ही सही जुड़ सके साथ चलते हैं और हम गीतों के माध्यम से उन लोगों को केवल एक संदेश इस तरह से कुछ देते हुए चलते हैं, जैसे कहानी को जैसे बताना है

अमृत वाणी, इसमें राम कथा का जो गायन है वो तो चलता ही चलता है, बीच में उस कथा के माध्यम से उस प्रसंग को लेकर हम लोगों तक अपनी बात को इस तरह रखते हैं, जैसे

0: महासमुंद जिले से आता है, उनकी प्रस्तुति को जब लोगों ने सर आंखों पर उठाया छत्तीसगढ़ शासन ने और उन्हें जो मान सम्मान दिया, ऐसे मेरे तमाम बहुत सारे कलाकार, मेरे शिष्य और मेरे जो कलाकार हैं मेरे निर्देशन में जिन्होंने किया है, उन्हें आगे बढ़ते देखकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि इस बेटी ने छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के लिए मैंने जो योगदान जितना भी हो सका जो किया है, उसके लिए मैं अपने गुरुओं का, छत्तीसगढ़ शासन का और तमाम छत्तीसगढ़ की जनमानस का आपको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि जब मेरी भी शुरुआत हुई थी लोक कला यात्रा की, तो मुझे भी लोगों ने प्रोत्साहित किया कि हाँ बेटी तो बढ़िया गाती है, आगे चल के बढ़िया गाएगी। ऐसा जब आदमी को प्रोत्साहन मिलता है तो आगे धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते चलता है। और मैं गौरवान्वित होती हूँ कि मुझे कलाकार के रूप में जब भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी मिली, तो आज जिस कला के मुकाम पर पद्मभूषण तिजनबाई जी हैं, उनके साथ मुझे नौकरी मिली, देवदास बंजारे जी जिनके साथ मैं पंथी नृत्य किया करती थी, तो छत्तीसगढ़ की जो विधाएं हैं, सुआ कर्मा ददरिया अनेक विधाएं हैं, उन विधाओं के अलग अलग अलग अलग उनके कलाकार हुए, ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी गर्व महसूस होता है। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की कुछ वानगी, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ गीतों को गाकर आपके बीच रखूं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: मन करता है कि आपको बस सुनते ही रहे, लेकिन घड़ी के कांटे जो है हमारे मन को हमेशा बांध देते हैं। जो उभरते कलाकार हैं या जो भविष्य के कलाकार या जो प्रेजेंट डे के कलाकार हैं, उन तक आप कुछ अगर कहना चाहें।
1: मैं उन कलाकारों से केवल यही कहूंगी कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले तो कवियों कलाकारों को भी ये चाहिए कि हम अपनी मूल कला संस्कृति जो है उसे लेकर आगे बढ़ें और अपना केवल कर्म करते जाएं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अति गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। इस बात को अगर वो लेकर चलें, और आज कलाकार सचमुच में केवल एक नाम के पीछे दौड़ के लिए बहुत अलग अलग इसमें संलग्न होते गए हैं, उन कलाकारों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगी कि अपनी जो कला संस्कृति है, माटी की महक है, उसे लेकर चलें, अध्यात्म को लेकर चलें और यशस्वी भारत के निर्माण के लिए वे कला संस्कृति के साथ साथ जो एक चरित्र है और साथ ही साथ अपना जो संयम है और सरज व्यवहार है, एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें, इन सब बातों को लेकर चलें। और एक कलाकार की जिम्मेदारी केवल गाने बजाने की नहीं होती है, बल्कि समाज को सुधारने की, समाज सुधारक के रूप में भी होती है, जागरूकता लाने की उनकी होती है। तो सभी कलाकारों से मैं यही कहूंगी कि अपने मूल को ना भूलें, अपनी कला संस्कृति में समाहित करें और साथ ही साथ देश के विकास के लिए, देश के नव निर्माण के लिए आगे बढ़ते हुए भी अपनी यात्रा को जारी रखें।
0: जैसे आपने तपस्या की और आपके जैसे कई लोक कलाकार हैं, जैसे भोजपुरी से मालिनी अवस्थी जी हैं, तीजन भाई जी का तो आपने नाम ले ही लिया, तो ऐसे लोक कलाकारों को उभर के आने में थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा रही है उससे अलग लोक संगीत, हालांकि लोग ये समझते नहीं कि लोक संगीत में भी शास्त्रीय संगीत का पूरा सम्मिश्रण

0: लेकिन लोक संगीत को और लोक संगीतकारों को या लोक कलाकारों को उभरने में थोड़ी अधिक मेहनत लगती है, क्या ये आप मानते हैं?
1: कलाकारों को लोक से जुड़कर रहने की जरूरत है, माटी से जुड़कर रहने की जरूरत है। जो लोक से जुड़ा रहेगा वो लोक का कल्याण और लोक मंगल की भावना को सोचकर तो उसे आगे बढ़ने में कठिनाई तो होगी है। तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। निश्चित रूप से लोक कलाकार अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हर क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ने का एक जरिया उनको मिलता जा रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब एक मीडिया और के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो केवल यही कहूंगी कि मैं दिया हूँ, मुझे आंधियों से बचाए रखना, अपने आंचल के तले छुपाए रखना, मैं लोक कला की रोशनी भी खेलूंगी तुलसी चौरे की तरह, दिल में जलाए रखना, दिल में जलाए रखना।
0: आपको सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई लाइव शो देख रहे हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, एनलाइटमेंट भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें रोमांचक प्रस्तुतियां भी हैं और उसमें जीवन में बल भरने वाले ताश युक्त शब्द भी हैं। और न केवल श्रोता साथियों की तरफ से लेकिन मेरी तरफ से भी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप दोबारा हमसे जरूर जुड़े और हमको इसी प्रकार से अपने ज्ञान से, अपने गायन से हमें लाभान्वित करिए, हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। उम्मीद करते हैं आप जरूर हमारा रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे।
1: ये मेरा सौभाग्य होगा, आपसे मैं बार बार मिलना चाहूंगी ब्रह्म कुमारी संस्थान से, और ब्रह्म कुमारी के साथ मिलकर चलूं, कुछ अध्यात्म के लिए भी कुछ कर जाऊं। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही सुखद पल होगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, के रूबरू होके। आपके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ।
0: और रजनी जी, मैं तो इतने अच्छे शब्दों में शायद नहीं कह पाऊँ, लेकिन मैं पूरे श्रोता साथियों की तरफ से, पूरे रेडियो मधुबन के परिवार की तरफ से यही आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप जहां भी जाए वहां अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का और अपने सरलता का प्रकाश जो है फैलाते रहे।
1: जितने जल्दी मुलाकात हो, बहुत ही अच्छा लगा। मैं मधुबन रेडियो के श्रोता साथियों का और आपका और ब्रह्म कुमारी संस्थान सबका मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।
0: हम इस पढ़ाव में पहुंच चुके हैं जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप एक शब्द में उसका जवाब देंगे। तो मेरे पहला सवाल आपसे ये है, प्रेम क्या है?
1: प्रेम जीवन का सार है।
0: ज्ञान क्या है?
1: ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं, जीवन अंधकार है, प्रकाश है ज्ञान।
0: सेवा क्या है?
1: सेवा हमारा धर्म है और हम मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है और मानवता की सेवा करना हम सबका धर्म है।
0: कर्म क्या है?
1: कर्म हम करते रहें और आगे बढ़ें, जीवन की यही सच्चाई है।
0: सुर क्या है?
1: सुर माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, वरदान है।
0: बहुत सुंदर। कौशल्या कौन है?
1: कौशल्या हर माँ वो कौशल्या है जो अपने बेटों को राम बनने की ताकत दे, और हर माँ कौशल्या है, और कौशल्या तो छत्तीसगढ़ की बेटी है, भारत की।
0: सुंदर। हर माँ कौशल्या है अगर वो अपने बेटे को राम जैसा बना सकते हैं। बहुत सुंदर
1: जी।
0: भारत क्या है?
1: भारत यशस्वी भारत अपने आप में समर्थ है और सक्षम है, विश्व गुरु के काबिल है।
0: भारत सक्षम है, समर्थ। रजनी रजत कौन है?
1: छत्तीसगढ़ के बेटी रजनी काम हवे कलाकारी, कला संस्कृति संवर्धन की हावे जिम्मेदारी, रामायणी कौशल्या गाथा गाथा ढोला मारू, और 24 बरस माँ देखे नहीं हूँ, मधुबन रेडियो ब्रह्म कुमारी कसमयारू, मधुबन रेडियो कसमयारू।
0: बहुत सुंदर। आपसे बात करके रजनी जी दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। और जो हमारा रेडियो मधुबन का टैग लाइन है, ये सुनते रहो मुस्कुराते रहो, वो तो मैं समझता हूँ आपके जैसे जब कलाकार हमसे जुड़ते हैं तो ये नेचुरली हो जाता है, हमें इसके कोई लोगों को बताना नहीं पड़ता, कि याद नहीं दिलाना पड़ता कि श्रोता साथी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके जैसे कलाकार जब जुड़ते हैं तो फोटो पे मुस्कुराहट अपने आप बनी रहती है, आती नहीं है, बनी रहती है। रजनी जी, आपसे मिलकर के मुझे और हमारे सभी श्रोता साथियों को ऐसा महसूस हुआ कि भारत जो है यशस्वी है आप जैसे नगीनों की वजह से, आपके

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया,

0: हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: करता हूँ, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहाँ हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रिय श्रोताओं, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है, संस्कार परिवर्तन। श्रोताओं, संस्कार व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। परिवार, समाज और शिक्षा से मिले संस्कार ही हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों को आकार देते हैं। इन्हीं संस्कारों से हम सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को सीखते हैं। कहा जाता है कि अच्छे संस्कार व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन समय के साथ समाज बदलता है और इसी बदलाव के साथ संस्कारों में भी परिवर्तन आता है। आज का युग विज्ञान, तकनीक और सोशल मीडिया का युग है। वैश्वीकरण ने हमें नई सोच और नई दिशा दी है, नई संस्कृतियों से जोड़ा है। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है और तेज जीवन शैली ने हमारे सोचने के ढंग को भी बदल दिया है। श्रोताओं, संस्कार परिवर्तन के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। आज की पीढ़ी अधिक जागरूक है, तर्कशील है, अंधविश्वास से बाहर निकल रही है। समानता, महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा मिल रहा है। यह समाज के लिए एक शुभ संकेत है। परंतु दूसरी ओर कुछ चिंताजनक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पारिवारिक मूल्यों में कमी, धैर्य और अनुशासन का अभाव तथा बढ़ता हुआ स्वार्थ हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहा है। आधुनिकता की दौड़ में कहीं न कहीं हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम संस्कारों में ऐसा परिवर्तन करें जो हमें आगे बढ़ाए, न कि हमें हमारी पहचान से दूर करे। आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना ही समय की मांग है। परिवार और शिक्षा का दायित्व है कि वे बच्चों में नैतिक और मानवीय संस्कारों को जीवित रखें। श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संस्कार परिवर्तन अनिवार्य है लेकिन मूल्यहीन परिवर्तन नहीं। जब आधुनिकता संस्कारों के साथ कदम मिलाकर चलेगी तभी एक सशक्त, संवेदनशील और सभ्य समाज का निर्माण होगा। इस संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद
1: नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी वेलकम सिस्टर
2: ओम शांति
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर मैं ही सोच रहा था कि आपकी बात सुन के एक्सेप्टेंस तो कर लिया टॉलरेट भी कर लिया लेकिन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेट के बाद आपने आपके एक लेक्चर में कहा था कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे ठीक है टॉलरेट कर लिया एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसको आप अच्छी सी साकार जो आपकी भाषा में दुआएं दो उसको गुड विशेस भेजो उसको प्यार भेजो इज दैट पॉसिबल
2: व्हाट इज द अदर ऑप्शन क्या भेजेंगे उसके अलावा
1: कुछ भी नहीं भेजेंगे बात ही नहीं करेंगे
2: कुछ नहीं भेजे ये होता ही नहीं कभी
1: अच्छा

0: जो एक जगह से निकले पांच लोग कार में, जस्ट टर्न किया ऐसे थोड़ा सा आगे जाके एंड उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. उस एक्सीडेंट के अंदर उस कार में तीन लोगों की डेथ हो गई. इज अ यंग मैन, इज अ फ्रेंड, 30-35 इयर्स ओल्ड, उसकी वाइफ, पेरेंट्स. वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, सो वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया. तो जब ये व्यक्ति जो बच गया, वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है, अगर हम दो मिनट बाद निकले होते तो, अगर हमने एक टर्न ऐसे के बजाय ऐसे लिया होता तो. उस दिन उसने इतना तक कहा, कहता अगर मैं रुक के एक ग्लास पानी पी लेता तो.
1: और उस वक्त किसी ने बोला भी होगा एक मिनट रुको सुनो, तो बोले नहीं रुका होगा फिर.
0: यस, तो हम कितना सोचते है ना, क्योंकि नॉर्मली वैसे थॉट्स आएंगे, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमें सिखाता है कि आप जाएंगे ही एकदम एक्यूरेटली अपने हिसाब किताब के पास, क्योंकि वो वैसा ही एग्जैक्टली होना है. होना ही है, आपकी मन बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेटली उसी डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स योर डेस्टिनी. आपको जाना ही होगा उस तरफ. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ नेगेटिव है, कई बार कुछ एकदम बहुत ब्यूटिफुल और पॉजिटिव होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अरे अगर हम एक मिनट लेट निकलते तो हमें ये ना मिलता. लेकिन हम एक मिनट लेट नहीं निकल सकते थे, क्योंकि हमें वो चीज मिलनी ही थी. इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए वाई, हाउ, वेयर, व्हेन ये उठ नहीं सकता, क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट. इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट. जब ये दो पॉइंट इतना इतना कूट के भर जाएगी, तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट.
1: जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहां कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे हैं. तो मिलने किसी और से गया था, उससे मिलके कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिलके निकल रहा था उससे मैं बोला क्या हाल है कैसे. मैंने बोला मैं तो स्ट्रगल करके पागल हो रहा हूँ. बोले तो उधर जाके क्यों नहीं मिल लेता. और फिर वहां से मेरा करियर बन गया.
0: दिस इज व्हाट इट इज. और अगर हम अपनी जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें ना, ऐसे कितने सीन्स आए होते हैं, कितनी चीजें जिसके लिए हम चेक करेंगे, हम कहेंगे अरे ऐसे कर दिया उस दिन अचानक, ऐसे कर देते तो. लेकिन जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, उनको देख के सोच के तो अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया. लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं, उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है. जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकले और एक्सीडेंट हो गया, तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को.
1: जाने से पहले यहाँ से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते, स्लाइडिंग डोर्स थे साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी, क्यों गिर गई थी. तो मैकेनिक को मैंने बोला यार ये लगा दे, उससे से जाके वो माथा लगा उनका. वो मुझे गिल्ट क्यों लेके गया, गिल्ट. रास्ते में एक मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया, गिल्ट. गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा.
0: 3 years.
1: हाँ, 3:45 रात को एक्सीडेंट हुआ था. हर रात 3:45 मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी. कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ. तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज. तो बाल्टी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था, नए पहनता. 3 साल के बाद ठीक हुआ.
0: दिस इज व्हाट इट इज. ये हमें, अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला. उसके बाद जो आपने कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना.
1: डिक्की में पड़ा था.
0: ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया
1: और उसी से जाके उनको यहाँ लगा.
0: जब हम इन चीजों को देखते है ना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं सो दैट वी आर गोइंग टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट.

0: इट्स एज इफ हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे होना ही था। वो डंडा यहाँ लगना है, इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए।
1: ढाई तीन साल के बाद कब ठीक हुआ है मालूम है सिस्टर? जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरी डे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबेरॉय मेरे दो बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल,
0: राइट? इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना, वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है।
1: ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ।
0: नहीं,
1: हो सकता है, दोनों भी करेक्ट है ना।
0: सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने से
1: मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोच हो जाता है तो
0: हाँ, आप मेरे बारे में सोचे वो रीच होती है वाइब्रेशन, लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे?
1: एक्सीडेंट नहीं,
0: हमने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना इस केस में।
1: नहीं, उन्होंने सोचा था ना बार बार कि मुझे जाना है उठा।
0: थॉट आती ही इसीलिए है कि मुझे जाना है। सी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर थॉट्स हमारी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट में वो लिखा हुआ है। वो थॉट्स हमें आने भी शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारी थॉट्स हैं, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम कभी भी उसको पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते अच्छा ऐसे इसलिए हुआ। बट वेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो आपने कहा गिल्ट रहा, स्ट्रेस या जो भी वो इफेक्ट,
1: शॉक
0: ट्रॉमा, उस सिचुएशन का इतना है कि डीप स्लीप में भी
1: रात के पौने तीन बजे
0: एग्जैक्टली उस टाइम पे माइंड उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए जो आपने कहा ना पूरा गीला भी हो जाना, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर भी पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने बजे डीप स्लीप में। तो आप सोचे कि इस ट्रॉमा का कितना डीप इम्पैक्ट था माइंड के ऊपर, और वो इसलिए था क्योंकि आत्मा उस समय इस ज्ञान की वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाती कि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उस आत्मा को इस समय और इस तरह से जाना ही था।
1: ब्रांड न्यू जापानीज कार, अ बिग वैन, उसका टायर पंक्चर होना मैंने पहली बार सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं था। और वो टायर पंक्चर होना हमको तो आता भी नहीं था, ड्राइवर को साथ लिया हुआ था, उसने निकलवाया, किसी को बुलाया, उतना पीरियड खराब टाइम गया उसका पंक्चर होना, फिर आगे फिर चाय पीना, पूरा वो टाइम तक पहुंचते गए, वहां तक पहुंचे कि एग्जैक्टली वो टाइम पे वो क्या कहते हैं वो जो एसटी वो बस आती जिसमें
0: लोग, आप जैसे कह रहे हैं ना एग्जैक्टली वो टाइम पे, दिस इज हाउ एग्जैक्ट इट इज गोइंग टू बी।
1: इधर से हमारा जाना, उधर से वहां आना, और एक ट्रक
0: बीच में रुका हुआ,
1: रोकना,
0: क्योंकि इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट। जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिंड,
1: सेकेंड टू सेकेंड माइन्यूटेस्ट,
0: कहते हैं ना सब कुछ प्री डेस्टिंड है। तो जब प्री डेस्टिंड होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कितनी एक्यूरेटली लिखी होगी। अगर हम दो लोग यू नो डिसाइड करें कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, डिसाइड करके फोन करके फिर निकलने के टाइम फिर फोन करके आप निकले क्या, मैं भी निकल रही हूँ, सब इतना कोऑर्डिनेट करके भी निकले ना, तो भी हम इतनी एक्यूरेटली नहीं मिलते जितना ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब ये चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है ये एक बहुत बड़े लेवल की हो रही है। वी हैव टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट, वेदर इट्स अ प्लेजेंट वन और वेदर इट्स एन अनप्लेजेंट वन, हम जाएंगे, वील वॉक टूवर्ड्स इट। लेकिन एक्सेप्टेंस मीन्स जो हुआ वो

0: अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही था अकॉर्डिंग टू द सोल्स कार्मिक अकाउंट।
1: बट दैट सोल वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉन्टेड इट, वो चाहता था कि सुरेश फोरे के पास बच्चे,
0: क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट में वो लिखा था कि अब उसे यहाँ नहीं कहीं और जाना है।
1: बट वो चाहते थे ना कि वो जाके मेरे साथ रहे बॉम्बे में पहले, लेकिन मैं नहीं जाऊँ, मुझे जाना है।
0: तो उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में जो लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब हम ऐसी चीजें, और ये हर एक के जीवन में हुई है सिचुएशंस, बातें ऐसी हर एक के जीवन में हुई है, सिर्फ अब एक्सेप्टेंस मीन्स उसको वहीं के वहीं फुल स्टॉप लगाना, उसके ऊपर लंबा चिंतन नहीं करना। जब ये हुआ, अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं,
1: मैं तो बार बार खोजता था अपने आप को,
0: दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। देखो एक चीज,
1: भगवान को खोजता था,
0: वही जो आपको शुरू में बताया ना, जो परमात्मा ने कहा न भगवान की गलती न भगवती की गलती। तो ये अब हमें, हम सबको अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स देखने हैं, छोटे छोटे भी अगर देखें, बड़े भी हैं अगर किसी के जीवन,
1: बहुत बड़ा,
0: हर एक के जीवन में होते हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज अनप्लेजेंट, बहुत सारे प्लेजेंट सिचुएशन ऐसी होती है।
1: सिस्टर्स को मैं अनप्लेजेंट बोलूँ कि प्लेजेंट बोलूँ कि मुझे इतना दुख हुआ 3 साल में कि मैं ढूंढता रहा कि कौन है भगवान, दुनिया कौन है, मैं कहाँ हूँ, और मेरा ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड जिसको किसी को बोलो, और गुस्सा ईगो अहंकार वो कुछ कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया।
0: इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, कि परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहती है ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी, ये कल्याण है उस सिचुएशन के।
1: मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से,
0: दिस इज इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम अपनी जीवन की इन सीन्स को देखेंगे हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है।
1: दैट शॉक, दैट ट्रामा, दैट वो झटका मेरे लिए जरूरी था।
0: लेकिन ऑल्सो बट वी हैव टू सी नाउ कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा, जब हम ये देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि सीन को रिजिस्ट किया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला।
1: नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया था मुझे
0: 3 साल तक, इतना दर्द क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था, तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस गिल्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड द पेन, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उतना दर्द होता, लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी कि ड्रामा की हर सीन हर एक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है, कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर, क्यों क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, वी कैन गो ऑन क्यों हुआ, इवन लाइक यू सेड गिल्ट, कई बार अपने आप से हमारे से कोई गलती हो जाती है, एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, एक्सेप्टिंग पीपल, वॉट अबाउट एक्सेप्टिंग माई ओन सेल्फ, हमारे से भी गलतियां होती हैं।
1: मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को, अपने आप को तो पूछता रहा, तो क्यों किया ऐसा, तो क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था।
0: अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है। कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्यों हुआ ये मेरे से, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते।
1: एक्सेप्ट करेंगे तो

0: ये करने का सवाल कहाँ का पैदा होता है?
1: एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई कैरीड इट, एक्सेप्ट क्यों है, क्यों था, मैं हूं ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ही ऐसे करता हूं। ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स, एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि सिचुएशन वैसे की वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, लोग वैसे के, एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट। एक्सेप्टेंस मीन्स मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा। मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है, हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है, सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है।
0: दैट मीन्स सोल्यूशन,
1: दैट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ थिंकिंग,
0: ओनली सोल्यूशन,
1: ओनली सोल्यूशन। तो कितनी एनर्जी बची हमारी, कितनी एनर्जी बची। मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है, हाँ है, तो आज से क्या करना है, लाइक दिस। मेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया, आगे से क्या करना है, दिस इज इट। लेकिन क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सोल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी। जैसे आपने कहा ना, तीन साल वो चला, तो एक्चुअली आप तीन साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे।
0: तब तक जहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई।
1: ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन लैक ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने उस चीज का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ। वेयर एज द ट्रूथ वॉज, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था। हमारी स्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है ना, उनके स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है। कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं?
0: दो साल तीन साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला, सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज्यादा कोई रूड नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो?
1: और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज होने से, क्योंकि वो चीज हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है। इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत याद रहती है, ना भगवान की गलती, ना उस इंसान की गलती, वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था, फुल स्टॉप। तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के महावाक्य वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी, किसी की बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया ना हुआ हो, मतलब मन में कोई भी किसी की बात का, किसी परिस्थिति का एक भी थॉट ना आए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाएं जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है।

0: कोई अकल्याण का बोल भी बोले, हमारी स्थिति इतनी स्टेबल है, इतना अनइन्फ्लुएंस्ड होंगे हम, इतना एक्सेप्ट कर लेंगे उनको कि वो अकल्याण का बोल जैसे था ही नहीं, तो वो उस स्टेज को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब अपना भी कल्याण किया, अनेकों का भी कल्याण किया।
1: ये भी तो विश्व ही है,
0: ये भी विश्व ही है। वेरी ट्रू। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को भी गुण में बदल दे, क्योंकि अवगुण का इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ हमारे ऊपर। जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई हमारे साथ गलत करे उसको भी दुआएं दे, कि उस अवगुण का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सिर्फ समाने की शक्ति से, पावर टू एक्सेप्ट।
1: ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू अस वॉज प्रीडेस्टिन्ड, बेस्ड ऑन आवर पास्ट कर्मा। This consequence was destined for us. We cannot blame God or any soul for what happens to us. We had chosen this consequence and it is our responsibility. We cannot create questions on any scene happening in our life. Every scene unfolding before us is accurate. It is fixed in the script of the drama of our life. How we respond to that scene now is our present choice. Accepting the scene of life's drama means understanding that everything is happening accurate. This is exactly how it was meant to be. Our thoughts, other people and situations will manifest in that way to make it happen the way it is meant to be. Even if we have made a mistake or have a difficult sanskar, we need to accept it. Accept it means understand we have carried the sanskar, understand the mistake that happened was a karmic account, and now focus on what to do next. Guilt and regret depletes soul power. Accept and move towards transformation.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत की गाथा हमने कितने गीतों, कितने काव्यों और कितने ही लेखों में पढ़ी है, पर हम अपने इस देश के अनेक हिस्सों की खूबसूरती से ठीक से वाकिफ नहीं हो पाते। इसलिए इस बार हम आपको ले जा रहे हैं मिलाने उन संस्कृतियों से जो हमारे भारत को और सुंदर बनाती हैं। स्वागत है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अगली कड़ी में, जहां सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं प्रकृति के अति धनी प्रदेश मेघालय।

मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है। मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। पूर्ण राज्य मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय अर्थात बादलों का घर। मेघालय मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ खासी जैंतिया और गोरो आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यतः रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतिया पहाड़ियाँ और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ विस्तृत मैदान पहाड़ियाँ नदी और घाटियाँ हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है। जब भारत अंग्रेजों के गिरफ्त में था तो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मेघालय भी बना। यहाँ के अनेकों नामों में से एक नाम जिसने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का दम दिखाया वे थे पापोगन नेंगमिंसा, जो एक बेहद हिम्मतवान योद्धा थे। उनका जन्म मेघालय के एक गांव में हुआ सन 1872 में। कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने गैरो हिल्स में प्रवेश कर लिया और एक गांव में अपना पड़ाव डाला। इस पर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को तो मार दिया पर ब्रिटिशर्स की बड़ी ताकत का वे सामना नहीं कर पाए और शहीद हो गए। आज भी हर साल 12 दिसंबर को गैरो हिल्स में लोग उन्हें याद करते हैं तथा मेघालय की सरकार भी उस दिन को हर वर्ष मनाती है।

मेघालय प्रधानतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल और मक्का हैं। इनके अतिरिक्त संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। संस्कृति ही हर प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करती है। चलिए आपको कुछ बताते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। ये क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। घूमने के लिहाज से मेघालय राज्य में अनेक गुफाएं, पर्वत शिखा, बाग, झील रिजॉर्ट स्थल, खूबसूरत दृश्यावलियाँ, गर्म पानी के सोते और जलप्रपात है। यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है शिलोंग, उमियाम झील, चेरापूंजी, जाक्रियम, मैरोंग, जुवाई, नार्तियांग, तुरा, सीजू और बलपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान।

चलिए अब चलते हैं लेने आनंद यहाँ के त्योहारों का। मेघालय का पोंगलांग नोंगक्रेम खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो 5 दिन तक मनाया जाता है। ये शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्मित नामक गांव में मनाया जाता है। शाद सुन मिनसीव खासियों का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार हर साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शिलोंग में मनाया जाता है। गोरो आदिवासी सलजोंग नामक देवता के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में वांगला नामक त्योहार

एक माने जाने वाला शिलांग में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां इतना अधिक पैदल नहीं चलना होता। शिलांग की उपयुक्त सुविधाएं, मनोरम दृश्य, खुशहाल लोग, बादल और लंबे पाइन के पेड़, पर्वत, घाटियां, दलदल और एक शानदार गोल्फ कोर्स शिलांग को एक अच्छा गंतव्य बनाते हैं। इसके अलावा घूमने के लिए पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में स्थित नोकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व तूरा भी है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी तथा हूलॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस पार्क में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है मेमोंग नारंग। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित है बालपकराम नेशनल पार्क जो दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ लाल पांडा का घर माना जाता है। इसका सामान्य रूप से नाम लेसर पांडा है। ऐसे और कई दार्शनिक स्थल मौजूद है मेघालय में जहाँ की खूबसूरती हर किसी का दिल लुभाने में सक्षम है।

अब बढ़ते हैं एक और सुंदर मंजिल की ओर और आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, किंतु चीन राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी और असमिया है, साथ ही यहाँ अंग्रेजी भाषा भी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और आसाम से भी मिलती है और इस राज्य में पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भागों की ओर है। कोमेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अगर बात करें इतिहास की तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इन सब के बाद 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान अरुणाचल के लोगों ने भी उनसे लोहा लिया, जिसमें से एक थे ताजी मिद्रेन। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तथा 1955 में 3 ऑफिसर्स को मार गिराया। उन्होंने ब्रिटिश राज के विस्तार को रोकने के लिए अपने साथी मिशमी आदिवासियों को एकत्रित करके काम किया, पर दिसंबर 1917 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1918 में वे अपना कर्तव्य निभाते शहीद हो गए।

भूगोलिक आधार से देखें तो अरुणाचल का अधिकतर भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित चांगलांग और तिरप पतकई पहाड़ियों में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला आगे नागालैंड की ओर मुड़ जाती है और भारत और म्यांमार के मध्य चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक सीमा का कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ ऑर्चिड फूल भी पाए जाते हैं और कई हरी भरी खाती

सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवन की ओर। यहाँ के लोकगीत, संगीत, हस्तशिल्प सभी कुछ मन लुभावना है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोगों की अपनी अलग अलग पगड़ी एक परिधान है। बुनाई कला का यहाँ अपना महत्व है। एवं हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली है। नृत्य यहाँ के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा लोसर, मेपिन एवं सोलुंग यहाँ के प्रमुख जनजातीय पर्व हैं। अरुणाचल के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदी समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय के त्योहार दुसार, अपनानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी द्योंगे, दोन्याई आदि भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह पर्यटन का एक केंद्र है तथा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थानों में त्वांग, दिरांग, बोमजिला, ईटानगर तथा जगहों में पापुरपेर, त्वांग मठ आदि है। अरुणाचल स्थित एक दार्शनिक स्थल ईटा किला भी है जिसका निर्माण 14-15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके नाम पर ही इस जगह का नाम ईटानगर है। इस किले से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किले को देखने के बाद सैलानी पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीले रंग की है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मंदिर में एक संग्रहालय भी है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, जहां पूरे अरुणाचल प्रदेश की झांकी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहां पे लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, सुंदर कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों का संग्रह देखा जा सकता है। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है। अन्य स्थानों में दोन्य पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के पश्चात अब हम आ पहुंचे हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, यानी मिजोरम। मिजोरम भारत गणराज्य में एक पर्वतीय प्रदेश है। मिजोरम के पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश है। पश्चिमोत्तर में त्रिपुरा, उत्तर में असम तथा पूर्वोत्तर में मणिपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये आसाम का एक जिला था। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं।

क्षेत्र विभिन्न प्रजाति के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। चलिए पढ़ते हैं मिजोरम के निपुण इतिहास की ओर। 1891 तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग पश्चिम बंगाल के अधीन रहा। 1858 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना लिया गया, जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला रखा गया। ये असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में चले स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मिजोरम भी बना। यहाँ के रोपुल नानी मिजोरम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता नहीं किया। सन 1993 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहाँ एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।

मिजोरम की पहाड़ियाँ घने सदाबहार वनों से ढकी हैं, जिसमें चंपक, आयरनवुड और गुर्जुन जैसे मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथी, बाघ, भालू, हिरन और जंगली भैंसों समेत कई जंतुओं का पर्यावास है। कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। मिजोरम प्रदेश के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती का प्रचलन है। अनुमानतः 21 लाख हेक्टेयर भूमि में 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, आर्चिड, गुलाब तथा कई अन्य मौसमी फूलों की खेती भी होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च, भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के लोग पाम ऑयल, जड़ी बूटियाँ तथा सुगंधित पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। चलिए अब सांस्कृतिक रूप से जानते हैं मिजोरम को। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में नृत्य और संगीत मूल तत्व है। यहाँ के त्योहारों में ईसाई धर्म के पर्व और स्थानीय कृषि त्योहार जैसे चपचारकुट, पालकुट और मिमकुट शामिल हैं। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का उपयोग होता है। चलिए अब मनाते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार। मिजो नागरिक मूलतः किसान हैं, अतः उनकी तमाम गतिविधियाँ तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हुए हैं। त्योहार के लिए मिजो में कुट शब्द का प्रयोग होता है। मिजो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से ज्यादातर तीन प्रमुख त्योहार चपचार, मिमकुट और थालफोंग कुट मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से मिजोरम एक अत्यंत सुंदर जगह है। समुद्र तट से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चम्फाई एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ तामदिल एक प्राकृतिक झील भी है, जहाँ मनोहारी वन है। ये आइजोल से 80 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सेतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिजोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है, जो बॉक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तलांग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। और भी अनेक स्थलों की मौजूदगी में आपका समय मिजोरम में कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।

चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी कि नागालैंड, जहां आपको सभी अन्य पूर्वी प्रदेशों की भांति खूबसूरत प्रकृति और अनेक सांस्कृतिक रंग मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ यहां के बारे में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है। इसकी राजधानी कोहिमा है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है, जिसकी ऊंचाई 3,840 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी

में अंग्रेजों के आगमन पर ये राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। ये नगा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र कहलाया। ये प्रशासन नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यहाँ असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। भूगोलिक नजर से देखें तो नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है। उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटपुई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं और यहाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना भारत के किसी भी प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बात करें नागालैंड की तो ये भी मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 70% में धान की खेती होती है। यहाँ मुख्यतः स्लेश और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड राज्य की लगभग 90% जनता कृषि में लगी है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना और आलू हैं।

0: चलिए अब भविष्य को संवारने वाले क्षेत्र यानी शिक्षा जगत की बात करते हैं और जानते हैं नागालैंड में शिक्षा के बारे में। यहाँ कई प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ कई स्नातक स्तर के महाविद्यालय भी हैं, जिनमें सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोहिमा साइंस कॉलेज, कोहिमा लॉ कॉलेज, नागालैंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स आदि शामिल है। कोहिमा में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का परिसर भी स्थित है तथा नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात आपको अब लिए चलते हैं अनोखे नागालैंड की अनोखी संस्कृति के समीप। नागालैंड में जनजातीय संगठन में कोलिया के निरंकुश अंग और सेमा व चांग के आनुवंशिक मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, लोहोरा और रिंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नागा समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वे खेतों में पुरुषों के ही समान शर्तों पर काम करती हैं तथा जनजातीय परिषदों में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रत्येक जनजाति के अपने त्योहार होते हैं। यहाँ नागा नृत्य, संगीत, गीत और लोकगीतों में जीवन के उल्लास की झलक मिलती है। नागा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है, तथापि इन्हें तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। संगीत और नृत्य नागा जीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं सेखरनई, मुआत्सु, तुकुए मोंगा और तुल्ली। चलिए अब चलते हैं नागालैंड का थोड़ा भ्रमण करने, यानी कि यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानने। नागालैंड में देशी विदेशी लोग प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटन स्थलों में द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, राज्य संग्रहालय कोहिमा व दीमापुर के चिड़ियाघर तथा कछारी शासकों की पुरानी राजधानी शामिल है। घूमने के लिए आप दीमापुर, किफरे, कोहिमा, मुकुकंचुंग, मोन, वोखा आदि जगहों पर प्रकृति के सुंदर रूप का लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियां एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती और बेचती हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग समय पर यहाँ तीन पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो है कोहिमा जिले के तोरफेमा में मनाए जाने वाला सिखरनई, लोंगलेंग उपमंडल के पोगो में मोन्यु तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलाग में मुआत्सु। रंग बिरंगे त्योहारों से, ऊंचे नीचे पहाड़ों से, झरनों से, गलियारों से होते हुए हम आ पहुँचे हैं इस खूबसूरत सफर के अंत की ओर। उत्तर पूर्वी प्रदेश कई महान व्यक्तियों जैसे कि मोजेरेबा, संती पादा रॉय, सुभाष चंद्र पाऊ, रूपवेल नानी आदि की जन्मभूमि भी है। हम सलाम करते हैं इन सभी को और अपने भारत वर्ष को भी, और साथ ही साथ लेते हैं आपसे अलविदा। सुनते रहिए 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं।

0: रानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजी सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष खाबों का सफर इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ खास अल्फाबेट लेते हैं और उसके पूरे गाने आपको शो में सुनाते हैं। तो आज हम लोग एम अल्फाबेट से बहुत सारे गाने आपको 50s एंड 60s के सुनाने वाले हैं, वो भी ओल्ड बहुत ही प्यारे प्यारे गीत है। जैसे कि सरस्वती चंद्र 1968 में एक फिल्म आई थी, उसके बाद हिमालय की गोद 1965 में एक फिल्म आई थी, 1962 में एक फिल्म आई थी मन मौजी, फिर 1968 में एक फिल्म आई थी आदमी, और 1959 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लैक कैट। उसके साथ ही हम दोनों 1961 में यह रिलीज हुई थी फिल्म बरसात की रात, 1960 में रिलीज हुई थी, और नागिन 1954 का ओल्ड वर्शन। उसके बहुत सारे न्यू वर्शंस आपने देखे होंगे, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। तो चलिए हम लोग फिल्मों के बारे में बाद में बात करते हैं, अब सीधे मैं आपको ले चलता हूं आज के इस कार्यक्रम की तरफ और बात करते हैं खाबों के सफर में। और आज के इस कार्यक्रम के खास हमारे मेहमान हैं अरुणा जी, जो रायपुर से पधारे हुए हैं, और उनसे हम लोग बातें करेंगे और उनके पास बहुत ही अच्छे इन फिल्मों के जो नाम हमने जो बताया आपको उसमें एम अक्षर वाले गाने बहुत हैं। तो एक एक करके गाने हम अरुणा जी से सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा उनके रूपरेखा क्या है, क्या भाव है उन फिल्मों के गीतों का जो अक्षर एम से शुरू होता है। तो आइए, आप सभी की तरफ से अरुणा का बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार रमेश जी एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अरुणा, और एक नए नए सॉन्ग हम लेके आए हुए हैं, और आशा करती हूँ कि मैं आप सबको इन सब के बारे में थोड़ा सा जुड़ सकूं।
1: तो सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे?
2: आप सभी तो जानते ही हैं कि बेटियों को पराई धन कहा जाता है, तो एक बेटी की जब शादी पक्की हो जाती है तो वह सोचती है कि मेरी जो सासू माँ हो वो माँ की जैसे मिली, और मेरे पिताजी हो, मेरे जो ससुर जी हो वो पिता जैसे मिली। तो वैसे ही उसमें से एक सॉन्ग है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश।
1: अरुणा जी, काफी अच्छी बात आपने बताया, और जैसे कि आपने भाव प्रकट किए हैं, और

भाव से यही लगता है कि कहीं ना कहीं लड़की को जो है अपने माता पिता बहुत याद रहते हैं और वो ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता को नहीं भूल पाती है। तो सरस्वती चंद्र इस एल्बम का, इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है जो पॉपुलर गाना है। और इसमें कुमुद नाम का करियर जो है, कुमुद नाम का कैरेक्टर जो है सरस्वती चंद्र में है, जिसको नूतन ने इस फिल्म में ये रोल किया है कुमुद का। और उनकी शादी जो है किसी एक अच्छे लड़के के साथ कर दिया जाता है, लेकिन वो रद्द हो जाती है, तो उसकी शादी एक शराबी से की जाती है। तो यहीं से कहानी में एक बदलाव आता है और बहुत सालों के बाद सरस्वती चंद्र का सामना फिर से कुमुद से होता है। तो ये किस तरह से है ये कहानी, हम लोग फिल्म देखते ही आप समझ जाएंगे। तो आइए इस फिल्म का पहला गाना आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते हैं, मैं तो भूल चली। ये गाना जो है इंदिवर साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। तो कल्याण जी, आनंद जी का बहुत ही सुंदर संगीत इस गीत में, आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम का पहला गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये गाना बहुत ही सूदिंग था, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी पहली लाइन उसको याद हो जाती है। तो ये एक ओल्ड फिल्मी गानों का ये खूबसूरती है कि आपको वो गाने का पहला लाइन ऑटोमेटिकली याद हो जाता है म्यूजिक के साथ में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं 1965 की बात करना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हिमालय की गोद में। ये एक आदिवासी गांव वालों की कहानी बताई गई है और इसमें मनोज कुमार जो है डॉक्टर सुनील का किरदार निभाता है और माला सिन्हा जो है फुलवा नाम की एक आदिवासी लड़की की रोल इसमें बताया गया उनको। और ऐसा होता है कि डकैत जो वहां के होते हैं आदिवासी डकैत, वो डॉक्टर सुनील को किडनैप कर लेते हैं और उसकी उसको बहुत पीटते हैं, मारते हैं और उसको ऐसे तकलीफ देकर छोड़ देते हैं। और ऐसे में माला सिन्हा जो फुलवा का रोल अभिनय करती है उस फिल्म में, वो वहां पर आती है और मनोज कुमार यानी डॉक्टर सुनील को बचाती है। तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है और आदिवासियों का जीवन शैली कैसा है, उनको किस तरह का तकलीफ होता है, क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारी इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। तो आइए अरुणा जी से बात करते हैं। इस फिल्म में एक एम अक्षर का गाना है, वो कौन सा है आप बताइए।
1: इस फिल्म में मनोज जी और माला जी दोनों ही रहते हैं यहाँ पे और मनोज जी माला जी को प्यार करने से मना करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार ये प्रकृति की हवा वापस लौटकर नहीं आती है, उसी प्रकार ये ख्वाब भी प्यार बनकर नहीं आएगी। और इसमें गाना चलता है, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब में तू प्यार ना कर।
0: जी जी जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और एम अक्षर वाला है, इसलिए हम सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। और जिस गीत को आपने याद किया है उसे कमर जलालाबादी साहब ने लिखा था, मुकेश की खूबसूरत आवाज में ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत से सजा हिमालय की गोद में इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना अभी आप

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और ओल्ड फिल्मों की जो बातें हैं वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती हैं। आज भी उनके स्टोरीज को देखने के बाद उस स्टोरीज को लेकर नए नए फिल्मों में उसको थोड़ा सा मिक्सिंग करके दिखाया जाता है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स करके दिखाया जाता है। तो वही एक और फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मन मौजी। जी हाँ, ये फिल्म जो है अपने आप में कमाल का फिल्म था और किशोर दा ने इसमें काम किया है। प्राण, अचला सचदेव, कुमारी नाज इस फिल्म के एक्टर्स रहे हैं। इस फिल्म में राजा नाम का एक किरदार को बताया गया है और बार बार अपराध करता है जिससे उनकी बहन जो है वो नाराज रहती है और रानी उससे रिश्ता तोड़कर डॉक्टर मोहन के घर में काम करने का फैसला करती है। हालांकि डॉक्टर मोहन को रानी और उनके भाई के बारे में सच्चाई का पता चलता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है एक बार बार जो अपराध करता है उस व्यक्ति का बताया गया है। तो आइए, इस फिल्म में भी एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है।
2: रमेश जी ने तो सारा आपको बता ही दिया है और वो गाना है मैं तो तुम संग नैन मिला के हाँ।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये गीत बहुत ही पसंद आएगा। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन का संगीत से सजा मन मौजी इस एल्बम से ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हैं आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा जो प्लीजेंट जो जिसको कहते हैं ओल्ड क्लासिकल मेलोडीज आप सुन रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग को बहुत ही सुकून पहुंचा रहे हैं। तो आइए, अगला गाना कौन सा है अरुणा जी आपके पास?
2: यहाँ पे वहीदा जी और दिलीप जी दोनों ही रहते हुए, अब वहाँ पे होता है ना ऐसा कि जब हम बहुत दर्द में हो, जब कोई परेशानी और हमारे साथ होता है तो लगता है सब कुछ वही है। तो वैसे ही दिलीप जी का एक्सीडेंट हो जाया होता है तो वहाँ पे वहीदा जी उनका साथ देती है। तो दिलीप जी उनको कहते हैं कि तुम ही मुझे रास्ता दिखाने वाले हो, तुम ही मेरा जीवन साथी हो। और उसमें गाना चलता है मैं टूटी हुई एक नैया हूँ।
1: जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं टूटी हुई एक नैया, ये भी गीत जो है अपने आप में कमाल का है। मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, दर्द भरा नगमा है ये। शकील बदायूं साहब का लिखा, नौशाद का संगीत से सजा आदमी इस एल्बम से 1968 का ये गाना अभी आपके लिए।

0: मैं तुम ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। मुमताज जी और बलराज जी इस पे किरदार है इनका। किसी की विशेषता को देखकर हमें प्यार हो जाता है और यही बात मुमताज जी पूछ बैठती है, मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ।
1: जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारी सी बात है आपने बताया इस फिल्म के गाने के बारे में। और निजार अहमद अंसारी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के कलाकार थे बलराज सहानी, मीनू मुमताज, जॉनी वॉकर। इस तरह से ये लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो इस फिल्म में जो है एक विशेष जो बातें हैं रियल लाइफ स्टोरी को बताने की कोशिश किया है, जिसमें हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय जो लेते हैं, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम उसमें ही फंस जाते हैं, वो चीजें इसमें बताने की कोशिश की है निजार साहब ने। तो आइए इस फिल्म का एक गाना जो अभी आपने अरुणा जी से सुना, वही गीत हम सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हम सबकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होता है, कभी दुख कभी सुख, लेकिन हमें हमेशा कंसिस्टेंस रहना चाहिए। वैसे ही इसमें देवानंद जी का रोल है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सिगरेट की कस लेते हुए कहते हैं, मैं इस धुएं की तरह अपना गम उड़ाता चला गया।
2: अरुणा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी मुस्कुरा रहे होंगे। ये जो है एक हम शक्ल लोगों की कहानी है, डबल रोल है देवानंद साहब का और दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों जो है एक देश सेवा में रहते हैं, सैनिक का किरदार निभाते हैं। और मुश्किल ये आती है जब एक मौत के मुंह में चला जाता है तब दूसरा उसी संदेश को उनके घर वालों को बताने जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो लोग यकीन कैसे करें घर वाले। तो ऐसा ही कुछ क्लाइमेक्स इस फिल्म में दिखाया गया है और साहिल लिधियानवी

आपका लिखा एक गीत है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है। जयदेव साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है हम दोनों इस एल्बम से, ये गाना अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और बातें चल रही हैं और गाने भी चल रहे हैं। एम अक्षर वाले आप खूबसूरत गाने सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने जो है आप तक पहुंचती हैं। तो लगता है कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की बातें जब जुड़ जाती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि आपने अभी जो गाना सुना वो कहीं न कहीं आपको एक सुकून देता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुवे में उड़ाता चला गया। इस तरह के कई गीत हैं जो अपने आप में एक मोटिवेशन देता है हमें। और बरसात की रात एक फिल्म आई थी 1960 की, मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये फिल्म जो है एक अलग कहानी बयां करती है। और बरसात की रात में युवक युवती से मिलते हैं, पर सही पहचान न होने के कारण कितना जो मुश्किलें आती हैं, हम एक दूसरे के प्रति कितने गलत सोच लेते हैं, तो वो इसमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इस फिल्म में भी एक एम अक्षर से गीत शुरू होता है, तो मैं चाहूंगा कि ये अरुणा जी हमें।
2: कभी कभी लगता है ना, हमने कभी किसी को देखा है, जाना पहचाना सा लगता है। वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, पर ऐसा लगता है कि हमने आपको कहीं देखा है और एक प्यारा सा रिश्ता भी बन जाता है। तो यही सॉन्ग है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कभी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और आखिरी में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जैसे कि ये

जी हाँ, ये गाना अपने आप में कमाल का है। 1954 का नागिन इस एल्बम से है, जो नागिन पर फिल्म बनी थी। और ये फिल्म जो है, सुनील शिकार करते समय अनजाने में एक सांप को मार देता है और नागिन आती है, सुनील को धसना चाहती है, वो बच निकलता है। धीरे धीरे नागिन जो है मारने की कोशिश करती है। तो इस फिल्म में ये क्लाइमैक्स बताया गया है। प्रदीप कुमार, वैजयंतीमाला, जीवन और कृष्ण कुमारी इस फिल्म के अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि अरुणा जी, इस फिल्म जो गाना है, आपने अभी हमने अभी जो सुना थोड़ा सा,

0: उसके भाव क्या है।
1: वैजयंती माला जी जितनी ही खूबसूरत थी उतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने उस पे कहा कि आपकी बांसुरी की धुन में मेरा तन और मेरा मन दोनों ही मेरे वश में नहीं रहता है, और उसमें बहुत अच्छा सॉन्ग चलता है, मन डोले मेरा तन डोले।
0: जी श्रोता, आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा गीत है और आपके मन में भी वो शब्द आ रहे होंगे। चलिए मैं और ज्यादा आपको इंतजार न कराते हुए और इस गीत की तरफ ले चलते हैं। राजेंद्र कृष्ण जी ने इस गीत को लिखा था और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हेमंत कुमार साहब ने बहुत ही खूबसूरत संगीत इसमें दिया था। और इसी के साथ मैं और अरुणा जी चाहेंगे आपसे इजाजत, और कहते हैं बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को आज के शो में काफी गीत हमने सुनाए वो बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर मैसेज करके अपना प्यार जताइए। तो चलिए अरुणा जी, थैंक यू सो मच।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे ना ना ना ना ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: फुड़ेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है,

0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको कुछ बता रही है कि जैसे कुछ मिल गया हो हमें. जी हाँ, हम एक सफर पर हैं, एक तलाश में थे खुद को पहचानने की, और अब ऐसा लगता है कि इस सफर में शायद कुछ कुछ जानने की कोशिश हो रही है. अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन हूं मैं, हु एम आई, आई द सोल. यहां तक तो हम पहुंचे, इसके आगे का सफर और जारी रखते हैं. और इस सफर में हमारी हम सफर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, फटाफट एक रिकैप करते हैं और मैं बताने की कोशिश करती हूं कि अभी तक मैंने क्या समझा जो ये सफर तय कर रहे हैं. हु एम आई, सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी कि क्या जरूरत है खुद को पहचानने की. तो इतने सारे रोल अदा करते करते, बहन का, माँ का, बेटी का, ये

0: भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आई द सोल, वो सुप्रीम, मैं वो सोल हूँ, वो आत्मा हूँ जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आपने इतना खूबसूरत हमें एहसास करा दिया है। उसके बाद था कि उस अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक थॉट जो था वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा था, एक इंटरनल प्रोसेस था जो कि बहुत लॉजिकल था, तो काफी क्लियर होती गई वो बातें। उसके बाद हम आए कि जो पूरा ये प्रोसेस है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो सामने आई ईगो। और ईगो के लिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर याद हो, मुझे अभी तक याद है कि वो जो ईगो थी वो मेरा अहम, जिसे मैं कहती हूं कि अपने आप को मैं सुप्रीम दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं, वो जनरेट हो रहा था अंदर कहीं फियर या भय से, क्योंकि अटैचमेंट थी। अब इसके आगे का सफर है, या इसको थोड़ा सा कुछ और आप कहना चाहेंगे?
1: नहीं, वो ईगो बने का, ईगो जैसे थे, इट वॉज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज। अपने मन में कोई एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में लेकर उस चीज से इतना जुड़ जाना कि इन द प्रोसेस अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाना कि मैं एक्चुअल कौन हूं। और जहां अटैचमेंट थी वहां एक रिजेंटमेंट है कि कहीं ये छूट ना जाए, वो डर एक बना रहता था। और ये फिर हम अपने व्यवहार में हमने देखना शुरू किया कि कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें ईगो झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा ईगो सामने आ रहा है। एंड वी लुक्ड अप अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स उसमें, जैसे आर्ग्यूइंग, जिद करना, यू नो, बॉसिंग, दूसरों के ऊपर रोप जमाना,
0: एंगर,
1: एंगर
0: मेजर एस्पेक्ट, और ये एहसास कि मैं सुप्रीम हूँ,
1: right.
0: ये देना,
1: राइट
0: right. ये एहसास तो अंदर से नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे डर है
1: right.
0: कि कहीं मैं नहीं हूँ,
1: तो वो एहसास करने की कोशिश करते हैं।
0: एक क्रिटिसिज्म जो है वो भी एक हमने माना था, और कुछ इंटरनल चीजें थी, हर्ट होना, रोना,
1: क्राइंग, सल्किंग, दूर होकर विद्रॉ करके बैठ जाना, यू नो, पेन जो अंदर चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट से, वो फियर से जुड़ा हुआ था।
0: जैसे शिवानी, इन पे एक एक करके मैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो ईमेल आए हैं उनमें एक ऐसा ही क्रिटिसिज्म, एक मेल है हमारे पास जो कोलकाता से आया है, मिसेस बैनर्जी का, एंड व्हाट शी सेज इज कि वो उनके 25 साल हो गए हैं शादी को, शादी के पहले दिन से ही उनकी मदर इन लॉ जो है उनसे नाराज रहती हैं, हर कदम पे, हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती हैं, और 25 साल, 25 ईयर्स लॉन्ग टाइम, तो उसके बावजूद भी वो क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुआ है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार मुझे बुरा लगता है और मुझसे मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, तो मैं क्या रास्ता अपना सकती हूँ? एक्चुअली 25 साल तो मतलब कंटिन्यूस,
1: लेकिन एक संस्कार बना हुआ ना, तो वो संस्कार कहीं चेंज नहीं हो रहा है उनका, तो जो सुन रहा है उसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें हम दो स्टेप में ले सकते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका ईगो क्या है, और जो हर्ट फील कर रहा है उसका ईगो का, क्योंकि ईगो तो दोनों का ही वर्क।
0: यहाँ एक बात, क्योंकि जो हर्ट फील कर रही हैं, जो हमने हर्ट की बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होता है, कि हम हैबिट पड़ जाती है कि अच्छा मैं हर्ट होंगी या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो मुझे हर्ट करेंगे,
1: राइट,
0: तो ये कैसे हम जो,
1: क्योंकि क्रिटिसाइज हम सब लोग बहुत करते हैं, हम सबको आदत है कि किसी न किसी को छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करें, तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कहाँ हम चेक करें, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग ये एक बिहेवियर है, ये हमारा व्यवहार है दूसरों की निंदा करना। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं, क्योंकि ये बाहर हो गया, अब हमें इसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा। हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आता है, और तुरंत आपके आइडिया को सुनते मैं उसको क्रिटिसाइज कर देती हूँ या उसको रोकने की या सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अब मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है कि जब मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, मेरा फियर क्या,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फियर है,
1: हाँ, क्या फियर होगा, क्योंकि कोई फियर है, मुझे उसको अपने आप के लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि जब मैं दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बिकॉज नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अपने बिहेवियर को देखना, उसके पीछे के भय को पहचानना, किस चीज से मेरा अटैचमेंट है वो पहचानना, लेट गो,
0: हाँ, उस अटैचमेंट को छोड़ना,
1: क्योंकि जैसे ही वो अटैचमेंट को छोड़ेंगे वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और मेरा ईगो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ स्टेप, ब्रेकिंग डाउन, इट्स अ प्रोसेस। देखो, सेल्फ अवेयरनेस यही है, अभी मुझे अवेयरनेस है कि ये एक प्रोसेस है जो अंदर चलता है। नाउ एवरी टाइम आई सी दैट बिहेवियर आई शुड गो टक टक टक स्टेप, व्हाट हैपन, बिहेवियर, फियर, अटैचमेंट, लेट गो।
0: यू नो, Very good. And it is possible actually.
1: It's possible. So let's see कि अगर आपने एक idea दिया और तुरंत मैंने उस idea को criticize कर दिया तो मेरा क्या fear हो सकता है इसमें?
0: कि मैं आपको overpower कर दूँ?
1: Absolutely. Simple. क्योंकि मेरे पास भी कोई idea था और मुझे अब ये भय है कहीं आपका idea accept ना हो जाए. कहीं आपका idea ऑर्गेनाइजेशन को या परिवार को या जो भी आपका आइडिया ना पसंद आ जाए. दैट इज माई फियर. और ये फियर है अटैचमेंट मेरी किस चीज से है? अपने आइडिया से.
0: ओके, आइडिया
1: बिकॉज वो मैंने भी तो एक आइडिया क्रिएट करके रखा था ना. और अब मुझे ये फियर है कि कहीं आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हो जाए और अटैचमेंट मेरी है अपने आइडिया से कि मेरा आइडिया वॉज
0: द बेस्ट.
1: I had come up with that idea. I have been thinking over it for so long. इतना उसमें energy invest कर दिया और वो अच्छी बात है energy invest करना. लेकिन करते करते करते उस idea से attachment हो गया. ये ही मैं हूँ. ये अगर accept होगा मुझे खुशी होगी.
0: लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे clearly दिख रहा है कि किसी situation में मेरा idea जो है वो सही है, implement किया जाए तो वो सही result देगा.
1: It's fine. तो ये भी नहीं है कि हम अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दें और दूसरे के आइडिया को ही एक्सेप्ट कर लें. दिस इज वेयर इट विल कम द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा. अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी? क्रिटिसिज्म की. क्रिटिसाइज तब करूंगी जब भय है. अगर मुझे श्योर है.
0: अच्छा हाँ, जहां मुझे ये श्योरिटी
1: है. सी इट्स ऑल दैट वे. इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. जहां मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है. कि यू नो इट्स नॉट एरोगेंस. सी एवरीवेयर देयर इज अ टू
0: लाइन.
1: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, स्वाभिमान, अभिमान. ये बहुत थिन लाइन है. हमें पता ही नहीं चलता. हम हॉप स्किप एंड जंप दोनों के बीच में करते रहते हैं. जहां हर्ट है, जहां दर्द है, जहां पेन है, इट्स ईगो. जहां स्टेबिलिटी है, यू नो, ये किसी और से डिस्कस करने की भी चीज नहीं. ये अपने आप अंदर पता चल जाता है. जहां स्टेबिलिटी है, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. एकदम स्थिति स्थिर है. कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई. मैं अपने स्वमान में हूं, स्वाभिमान में हूं. जहां कुछ नहीं कहते उन्होंने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई.
0: मेरे अहम को
1: ठेस पहुंचाई. ठेस पहुंचाई मतलब यू हर्ट मी. ठीक है, तो यू हर्ट मी दैट मीन्स आई वॉज नॉट इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट. यू कुड कम एंड यू कुड ओवर
0: टेक ओवर.
1: दैट वॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो क्रिटिसाइज हम तब करते हैं जब हमें भय होता है कि इनका आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आ जाएगा. और अटैचमेंट मेरी मेरे आइडिया से थी कि माय आइडिया वाज वेरी गुड. मैंने अपने अस्तित्व को उस आइडिया के अंदर ही जैसे खो दिया था कि यही मुझे खुशी देगा. नाउ व्हाट डू आई हैव टू लेट गो. ये आइडिया अच्छा था. हो सकता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है. इट्स फाइन. इट्स जस्ट एन आइडिया. ये सिर्फ एक आइडिया है. ये मैं नहीं हूं. ये इसको अगर कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा ही अस्तित्व ऊपर नीचे हो जाए. मैं अलग, ये आइडिया अलग. जैसे ये गाड़ी अलग, मैं अलग. ये शरीर अलग, मैं अलग. ये व्यक्ति अलग, मैं. अपने आप को उससे डिटैच करते जाओ. तो ये अटैचमेंट थी. इसको लेट गो करें. अब दूसरी तरफ जो बैठा है, जिसको हमने क्रिटिसाइज किया, वो कहां हर्ट होगा? तो वो भी एक ईगो है. अब सपोज आपके आइडिया को मैंने क्रिटिसाइज कर दिया. अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि आपको अगर पता है कि आपका आइडिया बेस्ट है या ठीक है, बिल्कुल. अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, हम दोनों चीजों को लेंगे. अगर आप स्वाभिमान में हैं, अपने स्वमान में हैं, आप ओपन हैं, आप अपने आइडिया से अटैच्ड नहीं हैं. जहां आप अपने आइडिया से अटैच्ड होंगी, पहली बात आप मेरे आइडिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे. क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस थॉट से कि आपका आइडिया बेस्ट है. यू नो, जब आप अटैच्ड हो जाएंगे इस थॉट से कि मेरा आइडिया बेस्ट है आपका, तो आप दूसरे के आइडिया को एक ओपन माइंड से देख भी नहीं पाएंगे.
0: इसका मतलब जो आइडिया मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है इस सिचुएशन में, उसके साथ भी मुझे अटैच नहीं होना है. इवन इफ आई नो दैट दिस इज द बेस्ट आइडिया.
1: दिस इज माई बेस्ट, राइट? सी अगेन, दिस आइडिया इज योर बेस्ट. ये आपका बेस्ट आइडिया है. बट Nowhere is it written के you know that means के कोई और एक अच्छा आइडिया नहीं ला सकता. तो आई कैन से दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट. ये मेरा बेस्ट था. मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता.
0: जिस दिन मैं ये सोच रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट, तो मैं क्लोज हो गई.
1: येस, दैट इज ईगो. दिस इज माई बेस्ट,

0: माई पोटेंशियल, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट ना. अब फर्क क्या आएगा कि यू विल एक्सेप्ट कि मेरी अभी इस समय वर्तमान समय इतनी कैपेसिटी है, दिस इज माई बेस्ट एंड आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड यू आर कंटेंटेड, आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया. अब दूसरे ने आकर कोई और सुझाव दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अगर आप स्टेबल है, स्टेबिलिटी में है, आप अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे कि मेरा आइडिया ये भी ठीक था, हो सकता है इनका आइडिया भी ठीक हो. इट्स एन ओपन माइंड. नाउ लीव इट कि किसका, वेदर इट्स अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी और वेदर समबडी एल्स इज इवेल्युएटिंग कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा था. लेकिन जहां आपने सोच लिया कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट था, तो आपने दूसरे के आइडिया को तो स्वीकार ही नहीं किया, आप अपने आइडिया को पकड़ कर बैठ गए और आपका मेरे प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा, अच्छा ये मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना इन्होंने सोचा है, आज तक इन्होंने कुछ किया है, मैंने क्या, तो एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी. तो जहां खुद को नहीं रिस्पेक्ट किया वहां दूसरे को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकते. नाउ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो बिकॉज सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको फियर है, पता नहीं रियली मेरा आइडिया अच्छा है. इंटरनली बाहर ही बोलेंगे कि सच में अच्छा है या हो सकता है इनका ज्यादा अच्छा है, ओपन माइंडेड नहीं है. और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मेरा अच्छा है, हो सकता है आपका भी अच्छा हो, लेट्स डिस्कस. हो सकता है इस बार एक्सेप्ट आपका किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा गलत था. यू नो इट्स बहुत हानिकारक होता है जहां हम, अगर एक बार हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तो मेरा बेकार है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग. ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है दोनों, दैट्स व्हाट वी सेड. यहां स्टेबल है, इधर चले जाना कि नहीं मेरा ही बेस्ट है, ये भी ईगो हो गया, और ये सोचना अच्छा तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं है, दूसरों का ही आइडिया हमेशा अच्छा होता है. अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडिया पर विश्वास होना, अपने आप पर विश्वास होना, ये अच्छा है. लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इसका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खराब है. अपने आप को डैमेज नहीं करना, दूसरे को भी डैमेज नहीं करना.
1: लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इससे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ अपने आइडिया से भी, इवन इफ मैं जानती हूँ कि वो आइडिया अच्छा है. लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे इनकी अगर हम देखें, कि मुझे मालूम है कि वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मतलब मुझे पता है कि देर इज नो नीड टू क्रिटिसाइज.
0: दैट्स फाइन, दैट्स द सिंपल थिंग. मुझे पता है, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर मैं हर्ट क्यों हूं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे डीप सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं. अभी तक हम हर्ट क्यों बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में. आपने मुझे हर्ट किया, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो गई, आपने ऐसा कहा तो मैं हर्ट हो गई. फंडामेंटल लॉ है, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते. आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को सुन लेती हूं और उसके साथ मैं अंदर जो करती हूं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था. आई हर्ट माई सेल्फ, यू डोंट हर्ट मी, आई यूज यू टू हर्ट माई सेल्फ, यू कांट हर्ट मी, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट. मन को तकलीफ हो रही है ना, आप मेरे मन तक तो पहुंचे नहीं रहे. आप मुझे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, आप मुझे फिजिकली उठ के मार लीजिए, आप मेरे मन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं. Do you have the power?
1: No, it means like when I say something to you, like
0: you say na, to you say it. Boli hue na aapke, maine usko swikar kiya, ab maine uske sath kya kiya, wo to yahan hoga na kaam. आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है. दिस इज डीप स्लीप एंड वी गो ऑन लिविंग आर लाइफ इन दिस स्लीप एंड दैट इज वाई वी आर विक्टिम. उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया. नोबडी कैन हर्ट मी, आई कैन यूज पीपल टू हर्ट माई सेल्फ, बट डोंट ब्लेम अदर पीपल, दे नॉट हर्टिंग यू, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ. सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी
1: हु इज बीइंग हर्ट, यू नो, लाइक सी इफ यू से समथिंग
0: है ना, अगेन इट्स द माइंड विच इज डूइंग द वर्क. मेरी सास ने ऐसा कहा, सबके सामने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था ना, अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. यू नो इट्स माई वर्क, ये मेरी थॉट है. अपने आप को क्या समझते हैं, खुद तो वो आता नहीं है उनको.

0: तो उनको बनाना नहीं आता, मैंने जो बनाया उसको सबके सामने वो
1: कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं हो सकता,
0: ये कभी खुश नहीं होंगी। उन्होंने दो सेंटेंस कहे होंगे सिर्फ, हम कम से कम 200 सेंटेंस अपने आप को कहते हैं अंदर, यू नो, वर्बली आप दो या चार सेंटेंस से ज्यादा किसी को नहीं कह सकते, लेकिन जो मन बातें करता है अंदर अपने आप से,
1: घंटों
0: बातें, घंटों और कितने दिन, तो कितने सेंटेंस होते होंगे, एंड दैट इज कॉजिंग द पेन। द अदर प्रोसेस कुड बी, उन्होंने ये कहा, सी इट डजेंट मीन के हम निग्लेक्ट करें, सपोज यू आर द मदर इन लॉ, ओके लेट्स सी ट्राई टू
1: इग्नोर कर,
0: आई कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज हो सकता है कि आप, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे रियली सही मायने में करेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जानबूझ के क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो प्रोएक्टिव अप्रोच वुड बी, इन्होंने कहा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, लेट्स से आपने कहा ये कप ठीक से नहीं रखा हुआ, ओके, तो वेरी डिटैच्ड चेक, क्या ये कप ठीक से रखा हुआ था, अगर नहीं, आई एम सॉरी ये कप ठीक से नहीं रखा था, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी, यू नो, प्रोएक्टिव। अगर मैंने देख लिया कि वो कप ठीक से रखा हुआ है, इन्होंने जान पूछ कर सिर्फ सबके सामने मुझे वो करने के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो फिर मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा रोल था, वो मैंने ठीक से प्ले किया, देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू चेंज इन दैट। आपकी कोई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी अंदर, आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते, क्योंकि ये भी एक बिलीफ है कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर
1: हो जाएंगे,
0: विच इज द डीपेस्ट स्लीप। जितना हम नीचे दूसरे को गिराते हैं, हम बहुत ज्यादा नीचे उतरते जाते हैं, इवन इफ वी वॉन्ट टू सी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर यहाँ चार लोग और बैठे हो एंड आप सांस हैं और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लोग पहले आपके बारे में सोचेंगे कि ये कैसी सांस है, सबके बाद में भी तो बोल सकती थी, तो वी थिंक कि ये लोग सोचेंगे कैसी बहू है ना, इसको कुछ करना नहीं आता, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, सब लोग सोचेंगे ये कैसी मदर है, ये बाद में भी तो बोल सकते हैं।
1: दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ, यू नो, व्हिच वी एक्चुअली कंटिन्यू टू लिव,
0: वी कंटिन्यू टू डू इट। सो इफ आई द डॉटर इन लॉ नो इट, आई शुड बी ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना बंद कर दें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ज्यादा हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पहले इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचूं। अगर मुझे पता है मैंने ठीक किया है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था। आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आएगा, मुझे आप पर रहम आता है कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे सामने कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है। बट वी डोंट से दिस, वी नॉट टू से दिस टू दी अदर पर्सन, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग दूसरे के लिए, एक जो आपने कहा ना सहानुभूति, कंपैशन, हम अंडरस्टैंड कर ले कि दूसरा इस टाइम ऊंचा नहीं उठ रहा, अंदर कोई डर है उसके।
1: लेकिन अगर हम कह देंगे तो अगेन हम हर्ट करने की कोशिश करेंगे,
0: ये कहना तो गलत हो
1: जाएगा।
0: अगेन हर्ट,
1: यू नो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ, यू नो, गिविंग इट बैक।
0: हम दूसरे का ईगो नहीं कम कर रहे हैं, हम अपना कम कर रहे हैं, हम किसी और को नहीं, क्योंकि अगर हमने कह दिया तो वो और डिफेंसिव हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा एक तो गलती की, ऊपर से उसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सो यू विल रिएक्ट इवन मोर। इंटरनल प्रोसेस हमेशा अपना ही किया जाता है, किसी और का करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगी कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, मैंने जो किया वो भी ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो स्थिरता रहेगी, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैंने जो किया ठीक, और आप जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान रखते हुए ये फील करेंगे कि आप भी अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट सीट वो कप डिफरेंट लगेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते, हो सकता ना यहां से ये ठीक लगा, मतलब ये एक बहुत स्थूल चीज है लेकिन हर परिस्थिति में, लेकिन आपके सीट पर बैठो तो ये गलत बैठा हुआ है, शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़े, तो दैट्स रिस्पेक्ट।
1: अवेकनिंग की जो बात आपने की, क्योंकि सुप्त अवस्था की बात करें, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे नहीं चले थे, जब तक हम ये जानते नहीं थे कि हम तो सोए हुए हैं एक्चुअली अंदर, और अंदर इतना अंधेरा हम सोचते हैं जहां की रोशनी होनी चाहिए, तो डीपेस्ट फियर्स की अगर हम बात करते हैं,
0: किसी भी मनुष्य में जो सबसे गहरा भय है वो है मृत्यु का। फियर ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द
1: बॉडी,
0: इस शरीर से इतना लगाव है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली, हमारा इस शरीर से इतना लगाव है, जो हमने कहा अटैचमेंट जब होती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें खो देते हैं, तो हम आज क्या समझते हैं मैं कौन हूं। जैसे हमने कहा मैं, तो कौन सी पिक्चर सामने आएगी इस शरीर की, जबकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा पांव आज दुख रहा है, तो मेरा है ना, फिर भी मैं कहते ये पिक्चर सामने आएगी, अपने अस्तित्व को इसके अंदर खो दिया, आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी, आई थिंक आई एम द बॉडी, और इसीलिए मैं उस भय में जीती हूँ कि कहीं मुझे कुछ न हो जाए. एक्चुअली मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो इस
1: बॉडी
0: शरीर को होगा, और वो होगा भी. तो कितना भी डर में रहे, जिस दिन वो होना है वो होना है, लेकिन अटैचमेंट है ना, तो वी लिव आवर लाइफ इन दैट फियर. डिटैचमेंट ये है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर को यूज करती हूँ. जैसे ये डिटैचमेंट आ गया, मृत्यु का भय फिनिश्ड. जहां मृत्यु का भय खत्म होता, और ये सिर्फ समझ के नहीं, अनुभव से होता है स्टेप बाय स्टेप, जहां मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वहां धीरे धीरे बाकी सारे भय भी खत्म हो जाते हैं.
1: सिस्टर शिवानी, जो हम ये पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जागने की, अभी तक जब भी हम बात करते थे जागने की, डिटैचमेंट की, आई द सोल को रियलाइज करने की, खुद को पहचानने की, तो मुझे लगता है बहुत से दर्शक और मैं भी कहीं ये सोचती थी कि ये थोड़ा जिंदगी के लेटर स्टेज में आना चाहिए ये पूरा जो भी प्रोसेस है. लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसका मतलब तो हम जिंदगी जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं.
0: सही बात.
1: हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्त अवस्था में हैं, तो अवेकनिंग कब होगी? अवेकनिंग व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अवेक?
0: द अर्लियर द बेटर. बचपन से ही अगर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं कौन हूँ और ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्लैरिटी अगर हो जाती, तो फिर अटैचमेंट बिल्डअप होने, अभी क्या हो रहा है, अटैचमेंट इतनी सारी बिल्डअप हो रही है, सो वी आर हैविंग टू गो बैकवर्ड. सारी बिल्डअप हो गई, फियर्स बिल्डअप हो गए, अब वी आर हैविंग टू डू द हार्ड वर्क, अंडू करना है. लेकिन अगर बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती मैं कौन, ये मेरा, अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होती ना. बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को नहीं कहते, कहते हैं भूल जाते हैं, वी आर नॉट सेंसिटिव, जैसे हमने कहा हर्ट नहीं होते. जैसे जैसे बड़े होते हैं, इतनी सारी चीजें, लेबल्स, पोजिशंस, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, जितने बढ़ते जाते हैं, अटैचमेंट बढ़ती जाती है, मैं अपने अस्तित्व को खोती जाती हूँ, उतना ईगो, बच्चे में कोई ईगो नहीं होता एब्सोल्युटली. इसलिए बोलते हैं गो बैक टू योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब अपने ईगो को निकाल दो. बच्चे में कोई ईगो नहीं है क्योंकि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है ना, उसने अभी तक उस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं बिल्ड अप की. जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना ऐसा हो रहा था. क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, एक इमेज बना दी है. मैं कौन हूँ? एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी, वो भूल गया. इमेज बिल्डअप हो गई है, मैं एक शरीर हूँ, मैं एक वुमन हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ये हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक बहुत अच्छे इंजीनियर, मैं एक ये इतनी सारी चीजें जो हूं. तो हर टाइम आई एम लुकिंग फॉर ये कौन है जो मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है. अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इमेज है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, तो जैसे ही किसी ने कुछ आया मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर दिया. लेकिन अगर ये डिटैचमेंट बिल्डअप हो गई थी कि मैं एक एनर्जी हूं, ये तो मेरा सिर्फ एक रोल है, ऐसा नहीं, ठीक है, चेंज, लाइफ वुड बी वेरी इजी.
1: वंडरफुल. सो यू सेड ये जो अवेकनिंग है, जागरूकता है, ये जो जागना है, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, और बचपन से ही अगर हम इस प्रोसेस पे चले तो अटैचमेंट होंगे ही नहीं. लेकिन अब इस वक्त बचपन में लौटना मुश्किल है, अंडू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जागा जा सकता है और किस तरह जाग पाएंगे?
0: हम लोग सभी तो जागने की कोशिश नहीं कर रहे, नंबर वार हम लोग सब यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी नींद से जागे.
1: बिल्कुल. तो अगली कड़ी में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. जान लिया हमने बहुत कुछ अपने बारे में, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस सुप्त अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को जानते हुए भी सोए हुए हैं, तो भाई जागना कैसा है, ये जानने की कोशिश अगली कड़ी में जरूर करेंगे. लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर खुद को तलाशने के इस सफर को जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्त अवस्था से हम जागृत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं. अब दीजिए इजाजत.

0: जा रहा था?
1: नहीं,
0: आ रहा था।
1: नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई छिट्टी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं देर से, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सब गुलमल है।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अत्याचार जब सीमाओं को लांघ जाए तो प्रतिकार की भावना का भड़क उठना लाजमी हो जाता है। फिरंगियों के अत्याचार ने भारतवासियों को आजादी के संग्राम में धकेल दिया था। लोग जान गए थे कि राजा या स्वामी से बड़ा स्वदेश होता है। कोई भी विदेशी उनकी जमीन पर बलपूर्वक रहे, ये उन्हें गवारा न था। स्वदेश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए वे अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो गए और आजादी के संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाओं से भर गया। ये संग्राम एक ऐसा सांझा प्रयास बना जो सांझे संकल्प और निश्चय के साथ लड़ा गया। इस संग्राम ने देश पर मर मिटने की बलिदानी परंपरा को विकसित किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे आजाद कुंवर प्रताप चंद्र की एक रचना।
1: ये
0: घटना उन दिनों की है जब क्रांतिकारी वीर सावरकर अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें टीबी का रोग हो जाने की आशंका जताई थी। सावरकर महीनों बिस्तर पर लेटे रहे और आहार के तौर पर वे सिर्फ थोड़ा सा दूध लेते थे। कभी कभी अपनी कमजोरी की हालात से परेशान होकर वे मौत की कामना किया करते। अपनी मृत्यु की गंभीर छाया में उन्होंने एक कविता लिखी थी। सब पे आती है सत की बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पर क्यों नहीं आती।

आ मृत्यु, आ आ तू, या आने के लिए निकली ही होगी, तो आ ही जा अभी, मुरझाने के गज से डर जाए फूल, अंगूर भी रसहीन, सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे, मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अपनी भरी आंसुओं की मदिरा, बस मेरे लिए।

प्राण यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि गण के लिए श्रुति जननी चरण तीर्थ सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतत उसके आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवरण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आह मृत्यु आह मृत्यु आह आह तू या आने के लिए निकली ही होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे तापसी नागराज और मुरलीधर नागराज। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर. मैं ही सोच रहा था कि आपकी बात सुन के एक्सेप्टेंस तो कर लिया, टॉलरेट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेट के बाद आपने आपके एक लेक्चर में कहा था कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, ठीक है, टॉलरेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको आप अच्छी सी साकार, जो आपकी भाषा में दुआएं दो, उसको गुड विशेस भेजो, उसको प्यार भेजो. इज दैट पॉसिबल?
2: व्हाट इज द अदर ऑप्शन? क्या भेजेंगे उसके अलावा?
1: कुछ भी नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे.
2: कुछ नहीं भेजे ये होता ही नहीं कभी.
1: अच्छा.
2: जिसके साथ कुछ
1: अनबन
2: बोलो या अनप्लेजेंट या समथिंग इवन बिगर देन दैट, किसी के साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट बना
1: हम
2: है.
1: हम कहते हैं किसी ने हमको बिजनेस में धोखा दिया,
2: कुछ भी रिश्ते में, बिजनेस में, प्रोफेशनली. आज कोई डॉक्टर पेशेंट को धोखा दे देता है, गलत हो जाता है. तो जहां एक ऐसा कनेक्ट है, जहां ऐसा कुछ हुआ है, हम उनके बारे में न सोचें, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, फुल स्टॉप. ऐसा तो होता ही नहीं. अगर वो भी हो जाए कि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही, जा नहीं रही. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बना है कनेक्ट, कुछ हुआ है, मतलब थॉट तो आने ही वाली है. अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम कॉन्शियसली

0: नहीं निकल सकते थे क्योंकि हमें वो चीज मिलनी ही थी, इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए व्हाई हाउ वेयर व्हेन ये उठ नहीं सकता क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट। इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट। जब ये दो पॉइंट्स इतना इतना कूच के भर जाएगी तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट।
1: जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहां कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे हैं। तो मिलने किसी और से गया था, उससे मिलके कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिलके निकल रहा था उससे मैं बोला क्या हाल है कैसे, मैंने बोला मैं तो स्ट्रगल करके पागल हो रहा हूँ। बोले तू उधर जाके क्यों नहीं मिल लेता, और फिर वहां से मेरा करियर बन गया।
0: दिस इज वॉट इट इज। और अगर हम अपनी जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे ना, ऐसे कितने सीन्स आए होते हैं, कितनी चीजें जिसके लिए हम चेक करेंगे, हम कहेंगे अरे ऐसे कर दिया उस दिन अचानक, ऐसे कर देते तो। लेकिन जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं उनको देख के सोच के तो अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया। लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है। जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकले और एक्सीडेंट हो गया, तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को।
1: जाने से पहले यहाँ से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते स्लाइडिंग डोर्स थे साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी क्यों गिर गई थी। तो मैकेनिक को मैंने बोला यार ये लगा दे, उसी से जाके वो माथा लगा उनका। वो मुझे गिल्ट क्यों लेके गया, गिल्ट रास्ते में एक मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया, गिल्ट गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा।
0: 3 years।
1: हाँ 3:45 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था। हर रात 3:45 बजे मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी, कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज, तो बाल्टी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था नए पहनता। 3 साल के बाद ठीक हुआ।
0: दिस इज व्हाट इट इज। ये हमें अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला। उसके बाद जो आपने कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना,
1: डिक्की में पड़ा था
0: ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया
1: और उसी से जाके उनको यहाँ लगा
0: ना। जब हम इन चीजों को देखते हैं ना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं सो दैट वी आर गोइंग टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट। इट्स एज इफ हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे होना ही था। वो डंडा यहाँ लगना है इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए।
1: 2.5-3 साल के बाद कब ठीक हुआ है मालूम है सिस्टर? जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरी डे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबेरॉय मेरे दो बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल।
0: राइट, इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है।
1: ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ,
0: नहीं
1: हो सकता है, दोनों भी करेक्ट है ना।
0: सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने से
1: मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोच हो जाता है तो
0: हाँ, आप मेरे बारे में सोचे वो रीच होती है वाइब्रेशन, लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे?
1: एक्सीडेंट नहीं
0: हाँ, हमने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना।

0: ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड जिसको किसी को बोलो, और गुस्सा ईगो अहंकार भाव वो कुछ कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया।
1: इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, कि परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहती है ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी, ये कल्याण है उस सिचुएशन के।
0: मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से,
1: दिस इज इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम अपनी जीवन की इन सीन्स को देखेंगे हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है।
0: दैट शॉक, दैट ट्रामा, दैट वो झटका मेरे लिए जरूरी था।
1: लेकिन ऑल्सो बट वी हैव टू सी नाउ कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा, जब हम ये देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि सीन को रेजिस्ट किया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला।
0: नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था मुझे
1: 3 साल तक, इतना दर्द। क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था, तो क्वेश्चंस गिल्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड द पेन। अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उतना दर्द होता, लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी कि ड्रामा की हर सीन हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है। कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, वी कैन गो ऑन क्यों हुआ, इवन लाइक यू सेड गिल्ट। कई बार अपने आप से हमारे से कोई गलती हो जाती है, एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, एक्सेप्टिंग पीपल, व्हाट अबाउट एक्सेप्टिंग माय ओन सेल्फ, हमारे से भी गलतियां होती हैं।
0: मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को, अपने आपको तो पूछता रहा, तू क्यों किया ऐसा, तू क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था।
1: अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है। कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्यों हुआ ये मेरे से, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते।
0: एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करने का सवाल कहाँ पैदा होता है?
1: एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई कैरीड इट, एक्सेप्ट क्यों है, क्यों था, मैं हूं ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ही ऐसे करता हूं। ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स, एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि सिचुएशन वैसे के वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, लोग वैसे के, एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट। एक्सेप्टेंस मीन्स मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा, मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है, हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है, सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है।
0: दैट मीन्स सोल्यूशन,
1: दैट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ थिंकिंग,
0: ओनली सोल्यूशन,
1: ओनली सोल्यूशन। तो कितनी एनर्जी बची हमारी, कितनी एनर्जी बची, मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है, हाँ है, तो आज से क्या करना है, लाइक दिस, मेरे से ये इतना बड़ा पाप

0: हो गया हो गया, आगे से क्या करना है, दिस इज इट। लेकिन क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सोल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी, और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी। जैसे आपने कहा ना, तीन साल वो चला, तो एक्चुअली आप तीन साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे।
1: तब तक जो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई।
0: ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन लैक ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने उस चीज का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ। वेयर एज द ट्रूथ वॉज, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था। हमारी स्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड है ना, उनके स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है। कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं?
1: दो साल तीन साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज्यादा कोई रूड नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो?
0: और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज होने से, क्योंकि वो चीज हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है। इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत याद रहती है, ना भगवान की गलती ना उस इंसान की गलती, वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था, फुल स्टॉप। तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा के महावाक्य वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी, किसी की बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया ना हुआ हो, मतलब मन में कोई भी किसी की बात का, किसी परिस्थिति का एक भी थॉट ना आए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाएं जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। मतलब कोई अकल्याण का बोल भी बोले, हमारी स्थिति इतनी स्टेबल है, इतना अनइन्फ्लुएंस्ड होंगे हम, इतना एक्सेप्ट कर लेंगे उनको कि वो अकल्याण का बोल जैसे था ही नहीं, तो वो उस स्टेज को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब अपना भी कल्याण किया, अनेकों का भी कल्याण किया।
1: ये भी तो विश्व ही है,
0: ये भी विश्व ही है, वेरी ट्रू। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को भी गुण में बदल दे, क्योंकि अवगुण का इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ हमारे ऊपर। जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई हमारे साथ गलत करे उसको भी दुआएं दे, कि उस अवगुण का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे, ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सिर्फ समाने की शक्ति से, पावर टू एक्सेप्ट।
1: ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: Everything that is happening to us was predestined. Based on our past karma, this consequence was destined for us. We cannot blame God or any soul for what happens to us. We had chosen this consequence

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी

0: typical cheese, a car, a bungalow, a designation, very big salary figure, ya ek vyakti, wo mere andar us energy ko nahi create kar sakta. That energy can only be created by me. But what I do is, ke us cheez ko lekar I can create that energy. Ye laptop hai. To laptop mere andar happiness nahi create kar sakta. Ye ek physical cheez hai, ye ek energy hai. Ye physical cheez us energy ko nahi create karta. But the thought that I create, now I have a laptop. You know, ye thought jo create kar liye, ye thought wo positive energy ko create kar deta. To sabse pehli realization ye hai ki koi bhi bahya cheez ya vyakti us feeling ko nahi create kar raha hai. Meri apni thoughts, kyunki humne chain mein dekha ki thought gives rise to feeling, nothing else. Koi bhi aur cheez wo feeling nahi create kar sakti hai. So now it's in my hand ki laptop lane ke baad main us achhi feeling ko create karu. या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा।

问爹你，哎嗨、哎、哈。

वालों का अखाड़ा अखाड़ा हो गया। अपने ही हाथों से खुद अपना

प्यार कैसी उलझन में है, प्यार बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, वो हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है, प्यार बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है।

हमारे लड़ने मरने को तैयार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है।

दिलदार। बड़ी समझे मुझको यार, छोटी है मेरी दिलदार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार। बड़ी हाँ बड़ी, हाँ बड़ी मुश्किल।

सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें।

पीले सूट पहनकर कैसा कूदे बांधे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अरे क्या जाना हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जाना हम किस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, सलाम तो साफ बन गया।

0: ये दुनिया पहचाने रास्ते है तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे
1: कभी हम

अनहोनी बात होगी। तुम जान हो तो तालम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुम तो

तकदीर भी बन जाए। चाचे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

आया है परी, जोड़ते या खुश, होना खुश, होना खुश।

ठगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पांव, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम

कोई पास इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए।

प्यार की अदा जिस फिदा हमको हुए सौगा। मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार, दिल के उतर गई।

दिल भर के ख्यालों में, हाय दिल भर के ख्यालों में, हम तो मगन जाते चले प्यार के नगमे हजार, मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार, अरे दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल बिक गया हम बिक गए, जख्म जिगर है बहार।

जो नहीं पीक लगे रंग भरा संसार मस्त नजर की कटार मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार हाय हाय हाय प्यार की राहों में तो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए सब मिट गया हम मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए सब मिट गया हम मस्त नजर की कटार हा हा हा

तो है तुमसे ही काम अरे हो तुमसे ही जुल्फों की शाम।

पूछी आदमी बनते हो, अरे हो रोशनी करते हो जलते हो, हर जो मिलते नहीं सारे तुम बारों से तन को सजाती हूँ मैं, हुस्न की आग में पलते हो, अरे हो रोशनी करते हो जलते हो।

गली गली लिए तेरा प्यार को अड़ है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार को बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली लिए तेरा प्यार को अड़ है कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार को बड़ी मुश्किल

ऐसी लड़की से अच्छा

0: करना चाहते हैं।
1: अरे ये क्या कह रही हैं आप?
2: अभी और गाइए।
1: चुप रहो भाई साहब, नाराज हो जाएंगे। और गाइए।
3: हाँ गाओ।
0: माँ और नहीं गा सकती।
3: गाओ
1: आपको गाना पड़ेगा।